सुमरो हरदम हर के लाने मांगो उनसे जो है जाने बिना करे एक बहाने। सुमरो हरदम हर के लाने मांगो उनसे जो है

अति भी तारे भव सागर से पार उतारे। जब जो जावे इनके द्वारे पापी से पापी भी तारे भव सागर से पार उतारे। तो इन खोनी चट अरे हाँ के इन खोनी चट

उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी राम नाम है जग में।

अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

भजन करो हरे

भजन करो हरे जगत जगता।

हरे जगत जगतारे भजन

0: ने दिलों की टिंग टोंग दरवाजे पर नहीं, आज एक घंटी आपके मोबाइल पर बजी है। एक लिंक आया, एक अनजान व्यक्ति का मैसेज आया, कोई ऑनलाइन दोस्त बना और आपने बिना कुछ सोचे समझे बस क्लिक कर दिया। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने थिंक ट्वाइस किया? नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं आरजे हर्ष बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की। आज इंटरनेट बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन और दोस्तों से जुड़ने का बड़ा माध्यम बना हुआ है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ खतरे ऐसे भी हैं जिनसे बचने के लिए बच्चों को सिर्फ इंटरनेट चलाना नहीं बल्कि सुरक्षित तरीके से इंटरनेट चलाना सीखना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ शुरू हुआ है टिंग टोंग थिंक ट्वाइस अभियान, यानी ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले रुकिए, सोचिए और फिर कदम उठाइए। तो आइए आज बात करते हैं बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए बच्चों, माता पिता, स्कूल और पूरे समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पे प्रोग्राम हेड जया सिंह जी। और मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि टिंग टोंग थिंक ट्वाइस अभियान शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिहाज से इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: थैंक यू। आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से आपने शुरू किया है। जैसा हम सब जानते हैं, इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। चाहे आप हो, मैं हूँ, बच्चे हो, कोई भी हो, बिना इंटरनेट की शायद जिंदगी जैसे रुक सी जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब आप बच्चों की बात करते हैं तो इंटरनेट सिर्फ पढ़ाई, मनोरंजन इसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज की डेट में हमें ये लगता है कि इंटरनेट कहीं उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। इसलिए हमको ये देखने की जरूरत है कि बच्चों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल जहाँ बहुत सारे अवसर लेकर के आया है, वहीं बहुत सारी खतरे भी हमें नजर आते हैं इंटरनेट से बच्चों के साथ जुड़ते हुए। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में 18 साल से कम उम्र के 11.3 करोड़ बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि जो टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं हमारी कंट्री में, उसमें से लगभग 14% बच्चे हैं। तो इतना बड़ा आंकड़े की जब हम बात करते हैं तो हमें लगा कि इस तरीके की जानकारी बहुत जरूरी है कि बच्चों तक जाए कि इंटरनेट सेफ्टी क्या है। और जब हम टिंग टोंग थिंक टॉयज की बात कर रहे हैं तो दोबारा सोचें, ये इसीलिए कहा गया कि इंटरनेट का इस्तेमाल धड़ाधड़ रीले देखने और स्क्रॉल करने के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल ये भी है कि आप कुछ भी कर रहे हो अपना दिमाग खुला रखें और सोच करके ही इंटरनेट इस्तेमाल करें। तो इसीलिए ये वाली हमने कैंपेन का शुरुआत की है।
0: जी मैम, जैसे कि जो है बच्चों की पढ़ाई मनोरंजन के लिए इंटरनेट पर काफी

0: समय बताते हैं। तो ऑनलाइन उन्हें किन प्रमुख खतरों या जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है?
1: ऑनलाइन देखिए, जैसे ही आप इंटरनेट पे जाते हैं, आप क्या करते हैं इंटरनेट से? या तो अगर बच्चों की हम बात करें, या तो वो बोलते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर वो बोलते हैं कि हम गेम्स खेल रहे हैं, या वो बोलते हैं कि हम कोई वीडियोस देख रहे हैं। तो ये सारे ही समय पे इंटरनेट के खतरे मौजूद होते हैं, सारे ही समय पे अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है, लेकिन हम इस वक्त खतरों की बात कर रहे हैं। तो जब आप बात कर रहे हैं चाहे गेम्स ही खेलने की, ज्यादातर बच्चे गेम्स खेलने जाते हैं, तो वहां पर आजकल जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बहुत सारे बाहर के यूजर्स भी उस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं। बच्चे ना जानते हुए भी अनजान लोगों से मित्रता बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद ना जानते हुए भी उनके और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लगते हैं, बिना सोचे समझे उनके भेजे हुए लिंक्स को क्लिक करने लगते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सिर्फ और इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी जो भी बातें हैं, हमें एक चीज अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए कि इंटरनेट डरने की चीज नहीं है। इंटरनेट से बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारे बहुत जरूरी माध्यम है ये, क्योंकि बहुत सारे चीजों में बच्चों को ये सिखाता भी है, बहुत सारी चीजों में बच्चों को भी जानकारियां भी मिलती है। तो इसलिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, और सेफ्टी अगर हम रखते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो इसीलिए हमारी ये कैंपेन थिंक टॉन्ग थिंक टॉइस वो यही कहती है कि सोचें, इस्तेमाल करें, लेकिन एक बार सोचें, रुकें, फिर इस्तेमाल करें।
0: तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मैम बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचने के लिए माता पिता और बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है?
1: अगर देखिए आपका किसी बाहर के व्यक्ति से किसी भी तरीके से कोई संबंध इंटरनेट पे बन जाता है, किसी ने आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, या आपको लगा कि आप किसी गेम के द्वारा किसी से आप जुड़ गए हैं, और फिर वो व्यक्ति आपसे धीरे धीरे दोस्ती करने लगा, तो उससे क्या होता है कि वहां से खतरा शुरू होता है जब आप बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि विश्वास से ही उसकी भेजी हुई चीजों को, लिंक्स को ओपन करने लगते हैं। या फिर वो व्यक्ति जब आपसे कहता है कि अपनी कोई फोटो भेजो, अपनी जानकारी भेजो, तो उसी विश्वास पर आप अपनी जानकारियां भी उस व्यक्ति को देने लगते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत, तब वो खतरा इंटरनेट का बढ़ जाता है। और इसलिए जो कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि आप तुरंत किसी पे विश्वास ना करें। जो भी कोई आपको इंटरनेट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है या जुड़ने की बात कर रहा है, तुरंत विश्वास ना करें। ये बच्चों और बड़ों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज, इंटरनेट पे जब आप जुड़ रहे हैं तो हमको ये जरूर याद रखना चाहिए कि अगर किसी तरीके का बुलिंग या किसी भी तरीके की परेशान करने से दिक्कत होती है, तो हम भी किसी को परेशान ना करें। हम जो है दूसरे व्यक्ति को भी थोड़ा मानवीयता से व्यवहार करें, दूसरे व्यक्ति को भी हम कुछ उल्टा सीधा ना लिखें, और किसी भी तरीके से प्रोवोक भी ना करें कि वो उल्टा हमें फिर पलट करके पलटवार करें इंटरनेट पे। तो ये भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अपनी कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपका OTP, आपका फोन नंबर, आपका किसी भी तरीके की जो आपकी निजी जानकारियां हैं, वो आप किसी को भी देने से बचें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई जानकारी मान लीजिए आपने गलती से दे भी दी, या मान लीजिए किसी भी तरीके से आपको लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो उस समय पे चुप ना बैठें। किसी बड़े को जरूर आप कॉन्फिडेंस में लें, इस बात को बताएं और साझा करें कि जो है इस तरीके की कोई गड़बड़ी आपको महसूस हो रही है, क्योंकि वही आपको बचाव का रास्ता दिखाएगी, अन्यथा आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है हर पेरेंट को अपने बच्चों को बतानी चाहिए, और एक खुला माहौल घर में देना चाहिए कि बच्चा बिना डरे माता पिता से इस तरीके की बातों को शेयर कर सके।
0: तो मतलब कि हमें कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या किसी ऐसे लिंक पर या किसी ऐसे दोस्त को अपनी जानकारी नहीं देनी चाहिए जो कि हमें नया नया दोस्त बना हो या कुछ भी। तो ऐसे में मैम हमारे पूरे समुदाय की या हमारे माता पिता की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, और ऐसे में रेडियो माध्यम क्या भूमिका निभा सकता है मैम?
1: देखिए, सबसे बड़ा जो माता

0: पिता की भूमिका है वो ये है कि बच्चों को इस चीज से डराएं नहीं, और दूसरी चीज ये कि आपको ये नहीं बोलना है कि अब तुम्हें फोन ही नहीं मिलेगा, अब तुम्हें इंटरनेट यूज ही नहीं करना है। हम लोग का सबसे बड़ा पहला कदम क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अब बंद कर दो सबको, बच्चे को बिल्कुल इंटरनेट से अलग कर दो या ऐसा कर दो। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हमको ये नहीं करना है कि बच्चे को बिल्कुल डरा करके हम इंटरनेट बंद कर दें या ऐसा कर दें। हमको रेस्ट्रिक्शन अलग चीज होती है और एक चीज होती है प्रिपरेशन। अगर आप बच्चे को प्रिपेयर करा सकते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है हर चीज के लिए। तो आपको जो है बच्चे को बिना डरे बात करने का माहौल आपको बनाना है। बच्चा अगर आपको बताता है कि कहीं कोई उसे बुलिंग कर रहा है, कोई उससे गलत बात कर रहा है, तो आप उसे उसकी बात पे भरोसा करें। जब आप उसकी बात पे भरोसा करेंगे तो बच्चा आके आपको बताएगा। उसको जबरदस्ती डांटना नहीं है, उसके ऊपर कोई ये नहीं करना कि उसी पे आपने बोल दिया तुम्हारी वजह से ये हुआ होगा। इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। और हम लोगों को अपनी भी चीजों पे थोड़ा सा बच्चों के सामने ध्यान रखना है कि अगर हम दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे इंटरनेट देख रहे हैं तो, और हम ये चाहते हैं कि बच्चा एक घंटा देखे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन जो होता है घर में चीजों को लेकर के, माता पिता को थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे समय बनाने चाहिए घर में कि जैसे खाना खाने के वक्त कोई भी फोन पर नहीं होगा। वो हर परिवार अपने तरीके अपना सकता है और वो तरीके साथ मिलकर के बनने चाहिए। बच्चों को भी उसमें शामिल होना चाहिए कि सेफ इंटरनेट यूसेज के क्या तरीके एक परिवार डिसाइड करेगा। तो बच्चे माता पिता साथ मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है आप खाने के टेबल पर बोलें कि उस समय पे फोन हम नहीं लेंगे। हो सकता है कोई परिवार डिसाइड करे हम सोने के 2 घंटा पहले कोई भी फोन को हाथ नहीं लगाएगा। तो हर परिवार अपनी तरीके से ये कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपस में बातचीत हो और बातचीत में एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस हो कि कभी भी किसी को भी अगर कोई परेशानी होती है इंटरनेट से, इंटरनेट के किसी यूजर से, तो वो आपस में घर में शेयरिंग होगी। तो इसी तरीके का माहौल अगर बनता है तो मुझे लगता है बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित माहौल हम तैयार कर पाएंगे और हम डराएंगे नहीं बच्चों को इस माहौल से।
1: तो मैम, गांव और छोटे शहरों में जैसे कि ऑनलाइन सुरक्षा को लेके हम जागरूकता कैसे फैलाएं मैम?
0: देखिए, छोटे शहरों में अभी भी क्या है कि बहुत सारी जगह जहां हम लोग जाते हैं आज भी ऐसे हालात हैं कि बच्चों के पास फोन तक नहीं है, इंटरनेट नया नया किन्हीं किन्हीं जगह पे आ रहा है, या इतना ज्यादा गरीबी है कि बहुत कम जो है इस्तेमाल हो पाता है। लेकिन फिर भी जब मैं 14% पूरे देश में बता रही हूँ कि बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी संख्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि छोटे शहरों में क्या करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये बताएं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वार्निंग साइंस हो सकते हैं, रेड सिग्नल्स हो सकते हैं, वो हर एक को पता होने चाहिए। ठीक है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके का कोई यूजर आपसे ये बात कह रहा है कि भाई ये बात किसी को मत बताना, ये अपने आप में एक रेड साइन है। अगर कोई आपसे आपकी निजी जानकारी पूछ रहा है, ये एक रेड साइन है। तो इस तरीके के रेड सिग्नल्स हर एक यूजर को पता होने चाहिए। आज भी बच्चे तो छोड़िए, बड़े भी बहुत सारे अननोन लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, बहुत सारे इंटरनेट स्कैम्स के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, खुद पहले हमें वही टिंग टोंग थिंक ट्वाइस वाली जो रणनीति है, पहले हमें खुद पे अपनानी चाहिए। और जब हम वो बात करेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे, हमारे जो घर के और सदस्य हैं वो भी देखेंगे कि इससे क्या फायदा हो रहा है, ये क्यों हम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है कि बच्चों को 2-3 चीजें जरूर बतानी है। एक तो ये कि कोई आपका कोई डेटा मांग रहा है, आप नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको जरा सा भी ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी तरीके की असुरक्षा महसूस हो रही है, तुरंत आप किसी बड़े को ये जानकारी साझा करेंगे, तुरंत आप किसी से बात करेंगे। और इस तरीके का माहौल आपको बनाना चाहिए कि देखो, तुम कुछ भी बताओगे तो हम आपको डांटेंगे नहीं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप चुप ना रहें, मदद मांगें। मदद मांग

0: कमजोरी नहीं है, समझदारी है। ये बात हमें बच्चों तक पहुंचानी है कि मदद मांगोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, समझदारी है। ये एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बच्चों को जरूर बतानी चाहिए।
1: साथियों, बातें तो बहुत हो गई, सवाल जवाब बहुत हो गए, और हम चाहेंगे हम आपको ये गीत सुनाएं और मिलेंगे एक छोटे अंतराल के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ।

0: श्रोताओं, हम लौट आए एक छोटे से अंतराल के बाद और आपको ये गीत कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। और आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। और हमारे साथ मौजूद हैं जया सिंह जी, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैम, ऐसे में तो मैम गलती तो बड़े भी करते हैं, तो आपने या आपकी टीम ने सिर्फ बच्चों को टारगेट किया है, खास तौर पर महिला या लड़कियां?
1: ऐसा नहीं है, बच्चे हैं वो बच्चों के साथ काम करता है, तो हम ये जानते हैं कि बच्चे बड़े भी गलती करते हैं, बच्चे भी गलती करते हैं, लेकिन बच्चों के थ्रू हम पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं। जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो माँ बाप को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, हम सिर्फ बच्चे से बात करके तो इस पूरे माहौल को तैयार ही नहीं कर सकते। जब तक माता पिता इसमें शामिल नहीं होंगे पूरी तरीके से तो ये तैयारी अधूरी है। माता पिता को ही मेन रोल लेना है, बच्चों को समझाना है, जो आपके हेल्पलाइन नंबर्स है ये सारा कुछ माता पिता बच्चों हर एक को पता होना चाहिए। कई बार माता पिता अगर किसी तरीके की मुश्किल में फंस जाते हैं, घर में शेयर हो रहा है, कई बार बच्चों को हेल्पलाइन नंबर्स याद होते हैं, बच्चों को याद होता है कि हाँ ठीक है कौन से वेबसाइट पे आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जो ये इंटरनेट के स्कैम से ये किसी कोई भी इनसे घबरा जाता है। लोग अभी भी इन स्कैम से लेकर के डरे हुए हैं, तो डर में क्या होता है आप सही कदम नहीं उठाते हो, तो इसलिए घर के हर व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊंगी 1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन है, हर एक को ये नंबर याद होना चाहिए 1930, मैं रिपीट करूंगी। उसके अलावा cybercrime.gov.in, ये एक राष्ट्रीय साइबर अपराध की जो है ये रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसपे कोई भी अपना अगर कोई भी दिक्कत होती है या किसी तरीके की कोई ठगी हुई है, कुछ हुआ है, तो आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, cybercrime.gov.in। तो ये दोनों चीजें तो है, बड़े बच्चे सभी को ये पता होनी चाहिए। उसके अलावा हम सब जानते हैं 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, उसका नंबर हर बच्चे को पता होना चाहिए। आज की डेट में 112 जो है वो इमरजेंसी हेल्पलाइन है, जिसमें तुरंत आपको किसी भी तरीके की आपातकालीन सहायता चाहिए तो तुरंत आपको जो है मदद मिलती है। तो ये तीन हेल्पलाइंस और ये आपका जो है cybercrime.gov.in, ये सारी चीजें हर व्यक्ति के दिमाग में बिल्कुल टिंग टोंग की तरह क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही टिंग टोंग हुआ आपको याद आ गया 1930। तो ये टिंग टोंग थिंक ट्वाइस कैंपेन इसको भी बोलती है कि ये सारे नंबर्स और ये सब कुछ आप एकदम अपने पास एकदम अपने दिमाग में तैयार रखें। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है बच्चे बड़े सबके लिए हैं।
0: जी, तो क्या हम ऐसे में मान सकते हैं कि शुरुआत में बच्चे को सावधान करना है, आगे इस कार्यक्रम में और भी लोग जुड़ेंगे क्या?
1: इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग पहले से जुड़े हुए हैं, हम लोग हर तरीके के स्टेक होल्डर्स के साथ इस कार्यक्रम को लेकर के जा रहे हैं। हम लोग जहाँ गाँव में बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, वहीं हम पंचायतों के साथ भी बात कर रहे हैं, हम टीचर्स के साथ भी बात कर रहे हैं जो बच्चों के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम सिर्फ बच्चों पे फोकस्ड है, ये कार्यक्रम बच्चों के लिए खास तौर पे है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्थिति में होते हैं। अगर बच्चों को अगर बड़े सपोर्ट नहीं करते, तो अगर कहीं एक बार बच्चे के साथ बुलिंग होती है या कहीं एक बार बच्चे को कोई थ्रेटन करना शुरू करता है, तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा गंभीरता से असर कर सकता है अगर बड़े उसमें टाइमली इन्वॉल्व नहीं होते। कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये भी

0: बताऊंगी कि जो है हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, सेमी प्राइवेट स्कूल्स के साथ भी इस इनिशिएटिव को लेके जा रहे हैं और हम लोग सभी से कह रहे हैं कि इस कैंपेन से जुड़िए। दिल्ली एनसीआर में इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए ट्राई वॉलंटियर बनके कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है। तो मैं इस रेडियो प्रोग्राम के जरिए ये भी लोगों को कहना चाहूंगी कि अगर कोई वॉलंटियरिंग करना चाहता हो इस कैंपेन की अवेयरनेस जनरेशन के लिए, इस कैंपेन को आगे ले जाने के लिए, तो सभी के लिए ये कैंपेन ओपन है। आप प्लीज संपर्क करें, आए, मदद करें। ये हमारे बच्चों, बड़ों, सभी के लिए ये कैंपेन है।
1: जी जी, तो साथियों अभी हम सुन रहे थे रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ जुड़ी हुई थी प्रोग्राम हेड के तौर पे जया सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा कैसे करें, उनमें माता पिता और पूरी समुदाय की क्या भूमिका हो सकती थी। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बच्चों को अच्छी जानकारी देने के लिए, माता पिता को जानकारी देने के लिए कि हम कैसे सुरक्षित कदम उठा सकें। तो दोस्तों अगली बार जब आपके मोबाइल पर कोई अनजान मैसेज, लिंक या रिक्वेस्ट आए तो तुरंत क्लिक मत कीजिए, एक पल रुकिए, थिंक ट्वाइस कीजिए और फिर सही फैसला लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको एक बड़ी परेशानी से बचा सकती है। याद रखिए, टिंग टोंग थिंक ट्वाइस। मैं हूं आरजे हर्ष और आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के बच्चों को भी ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में जरूर समझाइए। फिर मिलेंगे एक नई बात और एक नई जागरूकता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मैम, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू बुलाने के लिए आपको, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम। साथियों अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम नन्हे दिलों की और ये कार्यक्रम का समय हो चला है यहीं पर खत्म और हम चाहते हैं आपसे अलविदा, लेकिन जाते जाते हम आपको सुनाना चाहते हैं ये प्यारा सा गीत जो कि गाया है काशीराम अहरवार जी ने। तो चलते हैं गीत की ओर, सुनते रहिए और जुड़े रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ।
2: घर में

यह है कि एक गांव अपनी पुरानी विरासत को बचाते हुए आधुनिक समय के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए अवसर बन सकता है, कैसे हमारी बुंदेली संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकती है और कैसे विकास के साथ गांव की असली पहचान भी सुरक्षित रह सकती है। राम राम, मैं हूं हर्ष और आप जुड़े हुए आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन से। साथियों, मैं आपके सामने आज एक ऐसी बात रखना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। कभी कभी इतिहास सिर्फ किलों और महलों की दीवारों में नहीं मिलता, वो मिट्टी के आंगन में मिलता है, खेतों की पगडंडियों में मिलता है और उन बुजुर्गों की बातों में मिलता है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने गांव को बदलते देखा। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4 और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे हर्ष। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बुंदेलखंड के एक ऐसे गांव की ओर जो अपनी सादगी, संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण जीवन के कारण आज पर्यटन के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाड़पुरा खास की, जो ओरछा से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव पहाड़ियों, हरियाली, खेतों और ग्रामीण जीवन से भरा हुआ है। लेकिन सवाल ये है जिस गांव को आज लोग पर्यटन और अपनी संस्कृति के लिए जान रहे हैं, वो गांव पहले कैसा हुआ करता था? चलिए इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं, गांव के कुछ लोगों से बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं इस गीत को। श्रोताओं, कहीं जाइएगा नहीं, हम आगे भी बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। जुड़े रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ। कि बस

0: पर्यावरण हो तो बात जा समय बताने।
1: तो साथियों हम वापस आ चुके हैं आज के खास कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत में और चलते हैं गांव की तरफ, मिलते हैं कुछ किसान भाइयों से, कुछ युवा साथियों से जो हमें इस गांव का इतिहास, इस गांव की संस्कृति बताएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक भाई। भैया आपका नाम क्या है?
2: जी मेरा नाम दिनेश सिंह कुशवाहा है।
1: जी साथियों हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश कुशवाहा जी। तो हमारा आपसे प्रश्न ये है कि आपने अपने बचपन में लाड़पुरा को कैसा देखा था और उस समय गांव की जिंदगी कैसी हुआ करती थी?
2: अगर हम अपने बचपन की बात करें आज से 25-30 साल पहले की, तो उस समय ना तो गांव में कोई भी सड़क थी, ना ही कोई रास्ते थे, ना ही कोई अस्पताल थी, यानी जो जीवन था वो पूरा अस्त व्यस्त था। क्योंकि पूरे गांव में जो अपने मकान थे, कोई खपरेल था, कोई बिल्कुल कच्चा मिट्टी का ही बना हुआ है, और कहीं पर जगह जगह हमको ये लकड़ी और पत्तों की, जो हमारे यहाँ जंगल है पास में, तो जंगल के में जो सागौन है, सागौन के पत्तों से झोपड़ी बनाते थे
3: जी।
2: तो आज से 25-30 साल पहले की स्थिति ये थी हमारे गाँव की
3: जी।
2: और आज की जैसे अगर वर्तमान की स्थिति करें बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप है पर्यटन विलेज के दौरान
3: जी जी जी।
2: तो ये समय के हिसाब से बहुत कुछ बदलाव देखे हैं और बहुत कुछ महसूस भी किए हैं
3: जी।
2: अगर हम बात करें अपने यहाँ की जो सरपंची की बात करें
3: जी।
2: तो सबसे पहले 2001 या 2 में शायद मेरे हिसाब से पहली बार सरपंची आई थी
3: जी।
2: हमारे गांव में चुनाव शुरुआत हुए थे सरपंची के
3: जी।
2: फिर इसके बाद में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहा। कोई सरपंच आया तो उसने किसी ने थोड़ा पत्थर डलवा दिए रास्ते में, पहले क्या कि जगह जगह पानी भरा रहता था, बरसात के समय में कीचड़ था, पानी की भी समस्या रहती थी, ओनली जो कुएं थे तो वहीं से पानी की सुविधा थी, कहीं हैंडपंप नहीं थे। फिर समय के हिसाब से बदलाव होता गया, अपने पानी की सुविधा हुई, हैंडपंप भी लगाए गए, और कहीं कुछ सरपंच आए जो अपने, तो उन्होंने रोड पे पत्थर डलवा दिए। फिर इसके बाद बात करेंगे हम करीब अपनी 12-13 की, सन 2012-13 की, जब हमारे गाँव का जब एकदम से बदलाव हुआ है, तो ये जो हमारा गाँव पर्यटन में घोषित हुआ है, पर्यटन विलेज में, और वो भी मध्य प्रदेश टॉप में, क्योंकि जो यहाँ का रहन सहन था तो वो अभी भी पुराने रीति रिवाज, जो पुरानी अपनी संस्कृति है, तो संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
1: तो जैसा कि आपने बताया, तो उस समय लोगों का रहन सहन, खान पियन, खेती बाड़ी और रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती थी और आज उसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिला है?
2: अगर जैसे उस समय की अगर हम बात करेंगे पुराने समय की, तो उस समय जो हम अगर खान पान की बात करें, जैसे आज हम क्या कह रहे हैं, गेहूं का आटा
3: जी।
2: उसी से रोटी बना रहे, तो उस समय गोदे और फिकार होते थे, ये जो अपना आज के समय को मोटा अनाज बोलते हैं। तो आज के समय में अगर हम बोल लेंगे कोदे फिकार के अगर नाम बोल लिया, तो हमारे बहुत से साथियों को नाम भी नहीं जानते होंगे, जो नई पीढ़ी है तो वो नाम भी नहीं जानती कि कोदे होता क्या है, फिकार होता क्या है, ये चीजें होती कैसी थी, कहीं देखा भी नहीं है किसी ने, जो देखने की बात है जब नाम नहीं सुना तो देखा भी। तो अपना कोदे फिकार, अपना जो जवा बोलते हैं, जो
3: जी,
2: बाजरा और जुड़ई मक्का, इन चीजों की रोटी खाते थे। और जो अपनी गेहूं की अगर बात करें, तो गेहूं जब कभी कोई त्योहार पड़ा तो उस समय गेहूं की रोटी बनती थी। तो पहले खान पान में ये था कि गेहूं उतना ज्यादा पैदा भी नहीं होता था, सबसे ज्यादा फसलें यही चीज की पैदा होती थी।

0: हमारे बाप दादा थे उनके पहले का समय का तालाब है
1: जी।
0: तो जैसे हम उसका इतिहास भी नहीं बता सकते कि कोई भी नहीं बता वो कब का है, किसने बनवाया, कैसे बनवाया। तो एक प्राकृतिक रूप से तालाब भी है, काफी बड़ा तालाब है अपना। एक तरफ पहाड़ भी हो गया है देखने के लिए, अगर जो पर्यटन आ रहा है, सैलानी आ रहे, गांव की जिंदगी देखना है, तो यानी जो सारी चीजें हैं। अगर हम जंगल की बात करेंगे तो जंगल भी हमारा यहाँ देखने को मिलेगा, जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे, नदी को हमको आना चाहिए, नदी देखना है कि नदी का वो अनुभव चाहिए, तो वो भी चीज यहाँ पे है। अगर गाँव के यानी है 500 मीटर के, कोई चीज है गाँव से 200 मीटर के दूर की दूरी के दायरे में है, कोई अपने 500 मीटर के दायरे में, कोई 400 मीटर यानी 300-400-500 मीटर के दायरे में ही ये सारी चीजें हैं। तो यानी एक तरफ से सारी चीजें उपलब्ध हैं जो प्राकृतिक वातावरण में है।
1: बिल्कुल।
0: और इसके साथ में अगर मैन बात करें तो हम इसके साथ में कभी छेड़छाड़ नहीं हुई हमारी गांव की ओर से, तो ये सारी चीजें सुरक्षित रही। तो 2018-19 में एक हरित का हैस कोई संस्था हरित का वाले आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए गांव वालों को कि आप यहाँ पर होम स्टे बनवाइए, यहाँ पे जो आपकी लोकेशन है, जो गांव है, यहाँ पे आपके जो विदेशी सैलानी आ रहे हैं, हमारे नजदीक ओरछा लगा हुआ है 8 किलोमीटर दूर
1: जी।
0: तो ओरछा जैसे विदेशी सैलानी आ रहे हैं, उनको गांव का एक अनुभव चाहिए, गांव का रहन सहन, गांव का खान पान, क्योंकि गांव का जो खान पान है वो आज भी बदलाव नहीं है। हाँ, बदलाव इतना आया है कि पुराने समय में वो जो जुड़ाई मक्का बाजरा कोदे फिकार जो अपने कुछ मोटे अनाज उनकी रोटी खाते थे, आज गेहूं की खा रहे। बस बदलाव वही है कि जो मोटे अनाज की जगह गेहूं आ गया, और बकाया कोई बदलाव नहीं है कि अब यहाँ पे आपको पिज्जा नहीं मिलेगा, बर्गर नहीं मिलेगा, चाउमीन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा शुद्ध मिलेगा, जो गाँव का देसी भोजन है
1: जी बिल्कुल
0: वही मिलेगा। तो ये सारी चीजें रही।
1: और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी गांव की ऐसी कौन सी कहानी, ऐसी कौन सी परंपरा है जो आप चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको याद रखे और उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको जाने पहचाने और आगे उसको कायम रखे।
0: हमारे गांव में एक बोलते बछड़े उफाग
1: जी,
0: वो शायद मेरे हिसाब से भी मथुरा वृंदावन में भी चलती है कि आसपास की कहीं क्षेत्र में मैंने नहीं देखी फिलहाल। वो अपनी जो चैत्र माह आता है, चैत्र माह में जो नवरात्रि होती है, चैत्र माह की नवरात्रि का जो दशहरा है, उस दिन बछड़े उफाग बोलते। यहाँ पे एक हरदोल बाबा का मंदिर है हमारे गांव में, वहाँ पे करीब वही 40 फट के आसपास सागौन की बल्ली गड़ी, उस पे कुछ गुड़ पपड़िया बांधेंगे ऊपर। तो जो सारे गांव की औरतें हैं वो कम से कम 15-15 फुट लंबी लाठी लेकर उसकी रखवाली करेंगी। और गांव का इंसान हो या अनगांव का, दूसरे गांव से भी आए, कहीं से भी आए, कोई देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, चारों तरफ के पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं उस दिन वो प्रोग्राम देखने के लिए। तो उसमें सबसे पहले मौका तो दिया जाता है बाहर वाले को चढ़ने के लिए, गांव की जो औरतें हैं तो उसको वो रोकेंगी
1: जी,
0: कोई चढ़ ना पाए लट से। और वो सारी औरतें जो उसके नजदीक जाएगा वो पूरी ताकत से उस पर लाठी चलाएंगे। लाठी यहाँ पे वो पुरानी परंपरा चल रही है कि गांव के कुछ एक दो समाज जो है जो लाठी काटते थे पुराने समय से, वो यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जो
1: जी,
0: पहले
1: जी।
0: उनके बाप दादा काट के लाते थे, वो उनके लड़के ले आए, उनके
1: आगे
0: नाते हो गए यानी पोते हो गए, वो लेकर आ रहे, तो ये चीज वो चल रही तो वो लेके आएंगे। तो वो यानी लाठी कोई सूखी नहीं रहेगी, यानी वैसी मजबूत रहेगी कि आपकी हड्डी टूट जाए या कोई वैसी चोट लगे कि आपकी जो त्वचा है, खाल है, उसमें ही चोट लगेगी, क्योंकि जामुन की तो पतली लंबी लाठी लेकर आएंगे, गीली रहेगी तो आपका जो शरीर है वो फूलेगा लेकिन चोट नहीं लगेगी। तो उसकी वो रखवाली करेंगे, उस पे चढ़ना है बल्ली को, जो बल्ली के ऊपर जो वो गुड़ पापड़ बांधते हैं वो तोड़ देंगे, इसके बाद में जो अपना ये फंक्शन प्रोग्राम रहता है ये खत्म हो जाएगा। तो इस चीज की हमारे प्रयास भी है, गाँव का भी प्रयास है कि जो ये परंपरा चली आ रही है पुरखों से चली आ रही है
1: आगे भी कायम
0: और आगे भी कायम रहे, क्योंकि ये सबसे अनोखी परंपरा है और देखने लायक है, देखते भी लोग हैं बहुत दूर से।
1: तो आज जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे गांव के लोगों की जिंदगी या रोजगार में कोई बदलाव वगैरह आया है?
0: उसमें काफी हद तक भी बदलाव है, जैसे बात करें हम ई रिक्शा की
1: जी,
0: तो कुछ महिलाएं भी ई रिक्शा चला रही है, कुछ पुरुष भी चला रहे। तो जो पर्यटक आते हैं तो वो तो पैसे वाले हैं, घूमने के लिए आए, तो वो तो एक लग्जरी लाइफ पहले से ही जी रहे हैं, तो उनको फोर व्हीलर नहीं चाहिए, एसी गाड़ी नहीं चाहिए, उनको खुला माहौल चाहिए
1: जी।
0: तो अगर उनको जैसे आसपास हमारे ओरछा घूमने के लिए जाना है, जंगल घूमने के लिए जाना, तो वो अपना फोर व्हीलर से नहीं जाएंगे, वो गाड़ी

0: ये अपना जो होम स्टे बने हुए वहां पे खड़े हुए ई रिक्शा करके
1: जी
0: जाएंगे,
1: जी जी
0: तो एक ये ई रिक्शा का एक रोजगार ही मिल गया काफी
1: जी
0: लोगों को। और जो होम स्टे संचालक हैं जिन्होंने बनाए हैं उन वहां पे वो दो चार लोगों को रखे हुए भी हैं कि
1: जी
0: गेस्टों की देखरेख के
1: देखभाल के
0: लिए,
1: लिए
0: और इसके अलावा गेस्टों को जंगल घूमने के लिए जा रहा है, पहाड़ पे जा रहा है, गाइड की भी तो पड़ रही, तो कुछ लोग उनके साथ भी जा रहे हैं।
1: जी
0: तो यानी अगर बात करें तो 200-250 लोगों का रोजगार यानी मिला है और बड़ा है।
2: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे दिनेश सिंह कुशवाहा जी से, जिन्होंने हमें बताया लाड़पुरा गांव के इतिहास के बारे में। और उम्मीद है साथियों, आप सभी को दिनेश जी की बात समझ आई होगी कि हमें संस्कृति, अपनी विरासत को समय के साथ कैसे बचाना चाहिए। साथियों, कार्यक्रम में बातचीत ज्यादा हो गई है, तो इधर थोड़ा सा मनोरंजन डाल देते हैं जिससे हमारे श्रोताओं को अच्छा और अच्छा लगे। एक जिंगल हो जाए और ब्रेक के बाद फिर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, कहीं जाइएगा मत। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो, अपनी बातें। मेरा

0: गांव से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: तो साथियों, आज के कार्यक्रम का सारांश ये है कि बुंदेलखंड के ओरछा के पास स्थित गांव लाड़पुरा खास की कहानी पर आधारित। इससे गांव में पुरानी जीवन शैली, खेती, परंपराओं और संस्कृति की तुलना आज के ग्रामीण पर्यटन से की गई है। स्थानीय लोगों से गांव के बदलाव, रोजगार, युवाओं की भागीदारी और विरासत को बचाने से जुड़ा सवाल पूछे गए हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश है कि विकास और पर्यटन के साथ गांव अपनी जड़ों, बुंदेली संस्कृति और पहचान को भी सुरक्षित रख सकता है। तो श्रोताओं, लाड़पुरा की कहानी हमें एक खूबसूरत बात सिखाती है। विरासत वो नहीं जिसे सिर्फ संभाल कर रखा जाए, विरासत वो है जिसे अगली पीढ़ी तक जिंदा पहुंचाया जाए। आज गांव में आने वाले पर्यटक सिर्फ पहाड़, खेत या मिट्टी के घर नहीं देखते, वो यहाँ के लोगों की जिंदगी देखते हैं, उनकी संस्कृति महसूस करते हैं और उनकी मिट्टी से जुड़ी कहानी अपने साथ लेकर जाते हैं। इसी खूबसूरत कहानी के साथ आज के लिए मैं आरजे हर्ष आपसे लेता हूं इजाजत। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, जहां आवाज सिर्फ रेडियो से नहीं आती, आवाज आती है हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति से और हमारे बुंदेलखंड से। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुनते हैं कहानी, खो लेते हैं कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुंवर राजन के कुंवर
2: आओ
1: और एक हटे बाणिया के लड़का।
2: अच्छा मतलब एक हटे राजा के कुंवर,
1: एक हटे बाणिया के।
2: आज दो जने हो गए
1: हाँ। अच्छी तरह से उनकी दोस्त

0: उनके दोस्ती रहे स्वप्ने काम कहा तो के पढ़ लिख के जो भी याद है सुबन खो चले जावे दुई के दुई शिकार भी अपना घोरो मस्के भी अपना घोरो मस्के। अब जब वन में पहुंच गए तो जा शिकार खेली बा शिकार खेली खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बर्ती तुम्हें फिर करना है।
1: अच्छा,
0: कल के दिन में भी बोले बोले कल ले बीजन बोले अब बीजन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
1: अच्छा,
0: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल के अब राजन को तो बस बीजन थे अपने बानिया कितना शिकत बीजन।
1: अच्छा,
0: अब भी है वास्ता बीजन और वास्ता दोनों जने हो कह के राजा हो वास्ता तो बस बीजन ने जिसे बार मार बनवाए दाढ़ी फाड़ी बनवाई बार छटवाए कले कवैया कहाँ के जाने छटे कले ससुराल जा रहे।
1: अच्छा,
0: अब जब नाव घेगो से नाव को रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है फलाने के लगन है फलाने के सतकरा है फलाने के पक्किया थे
1: जा सही की आप
0: नाव को सब पतो है तो नाव को तो राजन की कुमारी की ससुराल को पतो
1: ऐसा
0: सो बस। अब बीजन के बार बन गए अब राजन के बादशाह के बनने तो बादशाह के बार बने तो बादशाह बोले बोले कर ले कब बोले कर ले ये राजन के राजा बोले कर ले बीजन तो जा रहा ससुराल है हमारा हम कैसे चले जावे। अरे बोले कर ले राजन के राजा आप कैसे ससुराल तो पृथ्वी पे काउ की है ही नहीं ना।
1: अच्छा,
0: तो बस बोले कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए।
1: अच्छा,
0: के नाव होगा वास्ता होगा बीजन हो गए अब तीन जने की दोस्ती हो गई बस सब चलिए ससुराल के जाने। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीजन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
1: अच्छा,
0: गली में से बटी उन्हें लगी प्यास तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो बीरन पिया पानी तो बीरन गौ पानी पीवे के लाने सुबह ने बीजक बांचो।
1: अच्छा,
0: बीजक बांचो बाद में सुबह में गलियां अलग अलग बीरन हो बदमाश बीरन बदमाश हो।
1: अच्छा,
0: तो बीरन ने कहा करो किस्ता के पानी पी के बावरी में वो वह बीजक को भरा जाओ
1: ले उसका
0: अगर हमारे अगर जब बीजक को जो राजा पानी पीवे आ रहा तो जब बाकी ले से संग छूट गो इसे के हमारे जी ससारे चलेंगे
1: चलेंगे
0: तीनों जने
1: तीनों जने।
0: हाँ, जा तो बीजन बदमाशी के रहो सुबह सब राजा पानी पीवे गए तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में हेरी सुबह में बीजक में गिराव लगो रहे तो राजन ने अपने खोबन के उली चुली के माए
1: धुदाओ
0: और फिर उगे बाचो बाचो बाय सुबह ने उन्हें प्रधान पूरो लिखो कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई और जब बीजन के कुमार को रास्ता गई दोनों जने तो बोले कर ले क्यों बीजन बोले कर ये राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कर ले पुरखन को बीजक के ने मिटा दिया है हट कर ले कि हम अपनी ससुराल जाते हैं अपनी ससुराल तो बोले कर ले उनकी शर्तें लग गई।
1: अच्छा,
0: बोले कर ले जो पहले आज विदा करा के वो जज बाउरी पे ठहरे क्या जन किते को बीत जाए।
1: सही सही
0: तो बस बेटी सब भी अपनी ससुराल चली गए और भी अपनी ससुराल कर ले वो जी ससुराल का नाव बोले कर ले जी राजन के संगे चले।
1: सही है,
0: अरे हमारे वर के संगे का चले हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी वो हेल्पर चलते हैं कर ले तो राजन की कुमार और ससुराल का दो जने जा रहे बीजन अपनी ससुराल चले रहे। अब सब राजन के कुमार जा रहे सो बन कजली में पहुंचे तो अब राजन के कुमार को लगी प्यास।
1: अच्छा,
0: बोले कर ले सुधाया कब बोले कर ले ये राजन के राजा कर ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकल जा रहा

0: इसे पानी को देखो, बोली कर राजन के जाने 12 कोस में ना पानी ना माय पानी, अपन वन में हैंगे। बोली कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना गाते। बोली कर ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पर चढ़िए, सुन पे देखते भी लम्बे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो ये उत्तर दिशा में बगली मर रहा है। तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है, पानी इधर होगा
1: बिल्कुल।
0: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है, उत्तर दिशा में बगली मर रहा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है, पानी जमी हो गई। बोले कल चल तो ले जा सुबह लोटा घड़ी लेकर, सुबह जन्म दिया पाई खुली से जीत गए आराम से आराम से नगर चले गए। हाथों के जानवर लड़की राजन को ब्याई थी वो नदिया में स्नान कर रही।
1: अच्छा
0: वो नदिया में स्नान कर रही सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कल सुताई अक्का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल उस तालाब में पानी ये सो ठीक है तुम लिया। बोले कल हाथ जाती ना पूछो पानी पी लो तुम। बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया ऐसा जल्दी हो थे को कि मचो सचो भर के आ गए। बोले कल महाराज कल ऊ तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही एक तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तुम तो सब मचो सचो भर लिया वो हम खुद की आसन मरी जा रहे। अरे बोले कल बगरा भी सुबह पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद नहीं वो कल सुधायक का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल इसको लड़की को पूछने तो जरूरी जब मुंह बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को। बोले कल कहो उन्हें कही

0: नवकक्का ने कही के
1: नहीं, राजन ने कही जावा,
2: राजन ने कही जावा,
1: राजन ने कही जावा। हां फिर कही उनने, अब्बा बोले जल में ठाड़ी जोन।
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही,
1: जो नहा रही बा बोल रही है।

0: या कब बोले कल राजन की राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल दो ना।
1: सही है
0: अभी से बोल दो ना बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ
0: है बोले कल नहीं अबे तो हम और बोलेंगे अब राजा बोल रहे हो भूले मोसा।

0: ने गली बता दो सो काऊ के द्वारे लग
1: अब पहुँच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते हैं अगर बता दीजिए, अब जल के भीतर हुई। अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए, इनको बदन शरीर है कैसा, मुँह करें माइक हो और पीठ करें इंताइक हो, कही के अब जाइए से बताया। सुनने के बाद माँ से बोली,

0: या बात भाई
1: अच्छा
0: बाद में मिली ना बताई
1: हाँ।
0: ना बाद में बदन काटो जल नीर में रही
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भीतर रही मैं साबुन में किसी गली तो पूछ ही ली गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ तो गांव के लाने तैयार हो गए। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्ली सफरों और सफर खूर के और बाप ने जेल चली जो ने ये हथी से जाते भवन द्वारे सत्या को देखो तो ससुराल सुवन द्वारे उनने अब पहुंची घरे पहुंची घरे सो गई घरवाऊ को बंदो अब भाभी से बोली भी

0: भाभी ने कही ऊंचे कंदीला नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ और तुम्हारी आ गए चाला।
1: अब लुबग्गा आ गए तुम
0: लुबग्गा। तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
1: ऐसा
0: भाभी से कही। सुबह सुबह घरेला उतार के अपने नाश्ता बनाने के लाने तैयारी की। तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला।
1: अच्छा
0: बोले कल देखो अपन को कगुआ गेल कुमार बनाए थी
1: बिल्कुल।
0: अब भोजन नहीं करने भोजन नहीं करने इसके यहाँ वाला
1: सही कह रहे।
0: अब खुला खुला थे अभी नहीं खुलो हमें तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की। सुबह सवा थी सोने व्यंजन की भोजन बने भोजन बना के और आज्ञा दे दी भोजन की लाना। तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सोने चाहे एक लो चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बना ठना ना जवाब ठोको।
1: अच्छा
0: ठोकनी ठोकने ना तो भीड़ कैसे खोले बाबा।
1: हाँ, सही है।

0: ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਸਰਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਅੱਬਾ ਭੁੱਖ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਈ ਹੈ ਜਾ ਬਾਪਨੀ ਬਾਂਧੀ ਬਸ ਚਾਚੀ ਮਾਜੀ ਬੋਲੇ ਕਲ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਬੋਲੇ ਕਲ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਧੋਈ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਧੋਈ ਫਿਰ
1: ਮੈਂ
0: ਦੱਸ ਕਿਉਂ बोली कल सुन ले कल सिपता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तक जा रहे इस पापन को मिलवा जाने इसको मिलवा जाने तो बस दिया कि सो तक जा हो गए जा से तरा हूं वो तो उन्हें भज्जा घूरो कसो सब रात में घूरो कस रहा सो वो ऊपर को पले चवन पीटते ने कस रहा
1: अच्छा
0: वो पले चा पीटते के तन दिन तो मुंगी आगे बड़ी आगे
1: हाँ हाँ ये मैं भी दे रहे थे
0: ये भी दे रहे थे ना क्योंकि कैसे जो सभी लोग हो जाए तो बस जो राजन को हाँ साफ चल भी हो गए तो राजा का कहने के क्या है जो ऊपर का पले चा नीचे कस दिया गया अच्छा कस तो उन्होंने भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे तो बस बिहती सु अब अति बेसु निकल के बस फिर करिए तो भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा बनी ये समंडोरा पाटे कोरे जले दिया

0: नहीं देखो रिश्तेदारी है वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जाओ
2: नहीं गए
0: उनके तो रुक गए जो पड़ोस की
2: पड़ोस की ने कही जवाब
0: पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो पैर वेर को संग है
1: सही है
0: बेर भर के जाओ तो उनने हदीसो जैसे कच्ची पुटिया पर मूद की वही रानास में ले गए
1: फिर मई खून ले गए
0: मई खून वही जहाँ उनकी राना सकती फिर पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए तो अब उनने सोची रानी ने कि अगर भोजन भी है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा फारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पे रहती भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज की सुनकर मोर भूल गई बन गई पड़ोसन दोहा दे रही संत।

0: जी उन संत पदियों से साधु जगे बम घले राजपूत अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब कुछ
1: सही है का हो
0: का हो
1: कते दुनिया भगत जा मेरे विश्वना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो होगा रानी राजा के पास मिल भी गई। अब फिर की दो हाँ कह रही है

0: ऐसी सासों का काम की हती तेरी कूखन बांझई हो जाती। और ऐसे सब कुछ जाए के लड़की होती तो परोस मिड़ी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो बोलती
0: ये तो गड़िया है ना यार, सुबह पटक थार और भी भगिया। जब थार पटक के भी भगिया ही सुबह मेरे में अब रात को समझ जब कहाँ जा रहा है जो सवीरम हो सोने घोरो मस्को उस चलिए। सो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहू रहो और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है सुबह भी है डट गए, खाना खाओ, खाना खा के और पीने सुनने सजाई तो उन्हें बिदाऊ की कई वो में खाना पीना सब और महीना भर पिलाने रखता खा पी के घरे चले गई। बस आओ अब भी हती सो अब पीने हकावे बारे हती सो जैसे गाँव के बारे करी तो उनमें मार जताई फिर भी भक्के छोड़ के अब खुद उनने हकाई अब सुताई अब काले कबाजी ने हकाई सुबह हका के वो बस सब कहीं ऐसी और चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को पीड़ो रहे से उतरे बस गए। शाम हो गई से बस गए, बस के में अब बोले कल्ले सुनो सुधा का बोले कल्ले का कल्ले ही पापन को नहीं छोड़ जाने यही रुकता है। अब बस सुन रही थी, बस सुन रही थी सुबह ने कही के ठीक है सताई अक्का से कही के सताई अक्का ऑर्डर दौरा नहीं के पत्नी लगाओ सताई अक्का गए से तीन पात में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को ये तीन पात में कहा खुल जाओ बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर दे मार रानी की फार के मार फिर दे। अब मैं सोच पातर लगती आई तो खाना खाओ, खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि जी भगत तो हमें छोड़ के ही इसे का करें से जिस सुबह घोड़े की पछाई की ईर रखी ईर बजट बात बडूर बजी की सुबह छोड़ के बाने पीने से मार ले बडूर कि ये भगे तो जब ईर टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हमें इसे कचु किया ले। सुबह सुनने पे तो घोरो भंचाई रात भाई वो बड़ा सुबह तनो वो तनी बड़ दूर तनी दूर सो नीक चावा को ठोको घोरी में सुबह दूर पाती सो उनने कही रानी ने मैं

पेनल्टी हर में बुझा दी हमें, हम न जई गांव के रहे न भई गांव के रहे, अभी सुन बारे के चले गए, भी अपने भवन को चले गए। और रानी ने अति से बा तुम नस्कू बी घर वाले और बाने हकाओ हका को रानी को गाड़ी हकाऊ थी हकाऊ थे रानी तो हका जो वैज्ञा से कचुवती तो राजा गिलंड की बाग में भी जा रहा जा रही सो अन्य भज्जा घर वन ना के टूटी माए की बोलैया टूटी रानी वो तो मालिन है जिस मालिन गोली गोली कर ले गई कौन कहा की पाप आ गई कहती है तुमने एक मोर रानी ने वो मालिन को बहू में भीतर काट गए बागा डीरा दे जाए अपने अभी तो राजन की बेटी थी तो कछु मोरन को कछु टूटो तो यही हकी भी तो बस अपने इंतजाम में अपनी कुछ में।

दुकान है, दुकान है सही है सही, कच्ची बिलाद दिना हो गए दुकान दुकान। तो एक दिन आओ, अब उनकी बेटी हती राजन की, यानी जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी को जमती, जमती नाव तो बेटी को सुबिन बे फूलन की तुला तो लगती बा, सुबह मालन रोजीना डाली लगावे और फूलन को ले जावे। तो राजन ने हकी सोची के मालन तो इतने आउट, हम आज बगीचा घूमने आए, तो बगीचा घूमन गए भी सोचे बार राजन की लड़की रह रहे। तो राजन ने सोची कि जे तो काछी माछी की तो जाहे नहीं है, है तो कहो राजा की लड़की, तो जैसे कैसे अपने घोड़े घरे पहुंची, घरे पहुंचे सो घरे पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने के माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ, आज डाली हमें लगाओ। तो उन्हें डाली, उन्हें लगाई रानी ने। अब बादशाह ने हती सो राजन की पिया न्योता बाबे न्योता कौन कौन अबे न्योता पिया रखो। सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह, सो अपने उन्हें थारी लगाई दो, उन्हें परसों बिजना की हवा कर रहे, बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह की। सुबिन्ने सोची अगर बनती हमारे फल वाली आउती बन में ना छोड़ी आउती भाई ना करती हवा, सो ने हर सांस ली। सो बीजन ने सोची के कोई बात में खरखसा है, राजन की बात में कोई खरखसा है, सो नाव से पूछी जावा। बोले क्यों खवास रखता, बोले कल कहिए राजा, कल कारण का है ई को, राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे, कल ये रानी को वन में छोड़िया घोड़ो उन्ने सजो और वीरन ने सजो और पहुंचे बोले कर ले चलो बताओ कि ते कौन छाड़ में छोड़ी। फिर जो रुख तरह छोड़े थे वही रुख तरह जीत गए दोनों जन, नाव नहीं गए वे दो ही गए, दो ही गए। सो बोले कर ले अब उन्ने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी वह धरी, सो मालिन के पास भी पहुंच गए, राजा गिलंद की बाग में उड़ गए पहुंच गए। सो उन्ने कही के ठीक है, सो उतर जाके इनने का किस्सा करो कि डीरा दो जन में गए। सो उन्ने भैया मालिन ने उन्हें घरी आए, बोले कर ले क्यों रे कहाँ के हो परदेसी कैसे फिर रहे तुम जगह बात, वो हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा ले। हाँ सुबिन आराम से मालिन को साधा, तो मालिन से पूछी सारी बात, तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गई राजा दिलंग की, ठीक है कि अब अरो कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही है, तो कोई जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें ऊपर जगह छाड़ी करी। सो मालिन ने किसी उन्हें पहुंच राजन ने बोली कर ले दो घोड़े वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे, उनमें सब नाश करता बगीचा को, सो उनमें छिड़ जा चलिए तुमको राजा बुला रहे। बोले कर ले हाउ साहब जब तक भी ऊंची हती भीड़ पुल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी लेके, बोले उनकी गैल में सलाह हो गई, बोले कल तुमसे बात करे सो तुम मूर काट दो और हमसे बात करे तो हम मूर काट लेंगे। बोले ठीक है, तो वे गए सो राजन की बगल में की बोले बैठो ये बोले बैठो। अब उन्होंने हतो एक बीजक राजा गिलन कि अगर जो बीजक जी ने पहुंच गए हम लड़की की शादी उसी के साथ करेंगे। तो अब उन्हें फिर तो जब सलाह हो गई बस सकार से काम लगा उन्हें। अब वो रानी ने डेरा जाओ डेरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलंद ने जो बात खो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ, बोली कर ले नहीं ये राजा गिलंद को बाग कटे चल जी और जी मकान गिले चल जी। सुबह ने कही तो ठीक है, सुबह जो भैया जो काम लगो सुबह अपने मजूरी खोने की जाओ जावे। सुबह रानी जो बबी की अच्छी से छाजी को दातन कर रही थी, सुबह बीजक लाई थी बबी जब बबई लूटा के करती दातन वो लूटा।

0: দেখো হয়তো সুবা বীজা কমবেন তো বাসান বাঁচবে বিরান বাঁচলে বাসান বিরান না বাঁচবে
1: जो राजा गिलन की लड़की सो अब तो खिलाड़ी है उन्हें बोई लूटा दो वो लोटा उनमें दाओ सुबह ने अच्छा ले रहा ये गेंद की बल्ला क्या और बल्ले लोटा हो गई बाग में पहुंच सुबह सुनने फिर भेज छड़ गया पकड़ लिया सुबह जब भी गए पकड़ा सुबह दीप दाग के कल ये कौन मजबूर हैं ये तो कोई राजा है सर तो क्यों तुम बोलत कैसे हैं बोले कल महाराज तो नहीं मंजूर संजू तो जो राजा पर बोले कल या पर बोले पकड़ लिया चलो अब बिने मिल गई थी वो बीजक वो बीजक उनने वहां से उसे पूरो कर ये कब दो मिल रही दो मिल रही है सुबह के सो लेकिन भाई फिर उनकी सलाह तो बात गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करे तुम काट ले सुबह राजा काउ समाप्त न कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगियां एक दिन आते बोलने में रुको क्या के पहुंचे इधर से राजा ने कही बोले कल ले कवि साहब कहां के रहने वाले हो कैसे हो बोले कल ले के दीजिए सुन फिर वह लड़की की शादी करी उन्होंने उनकी रानी ने हती बात से हो गई।
2: देखो दोस्तों जा तो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी को सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ अब एक के संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो ये कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

आखिरे अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव, तो सुनो जी काकेरे।

0: सभी श्रोताओं को भैया अपने काशीराम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सबजन के लाने एक बहुत ही नौ नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं। जी को भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करें और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताए। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को। जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के। अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो एक गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सुन बताओ है। और अपन सज्जन ने सुनो है, अब अपन बात करत है राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपना दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन काके रे विवाह हो दादा?
2: क्या नाम है? पूरा पचोक ग्राम केना जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी मध्य प्रदेश।

0: अपन का कौन कौन सी देखते हैं लगातार का परेशानी देखते हैं आती है अपन का
1: देखो ना खाना मुराद एक बात देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरी फिराज हर एक बात की नेक में मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार
0: और वैसे वो समस्या है अपनी
1: अब वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो हमें ले रहा है हम खा रहे
0: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी जाओ
1: आओ बैठ जाओ जी नहीं आओ पूछ रहे थे
0: अच्छा
1: अस्पताल जाने
0: हाँ और अपने सेवा खुशामद के बारे में आपका क्या सर
1: सेवा खुशामद सब करा थे जी बैठे अब वैसे ही भी है तब लोग ठीक नहीं है चला फिर कर लगे तो
0: दिक्कत है उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
1: आप झेल सका तो मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खर्च तो ठीक ही है अरे कछु ना कछु ना तो 10-15 उसको तो खर्च है ही आदमी को मान के चलो कछु ना कछु वो 10 उठा के चल जाती है
0: दिन भर आपको कैसे कटा था
1: दो बच्चे उनका दिमाग लगा ले सिगारे अपने छाने में चल बस
0: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं आया थी जैसे का आप अब बुढ़ापे की
1: बुढ़ापे मतलब
0: दिक्कत है आदमी का
1: दिक्कत तो देखेगा नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांच पा रहे हम मतलब और उसी है दिखा कगदा नहीं बांच पाऊ मुझे दिखा सकते
0: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो खावे पीवे की आपकी का
1: खावे पीवे की कोई तकलीफ नहीं है जो घर में है तो खा
0: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है
1: चलो इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया और पापा जाना फेरी पापा ही जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी को चाह रहा हूँ आदमी हमारे बाल बच्चों जो चीज मिल जाए हमारा मिल जाए दूसरी की जठानी न मिल गए दिवानी न मिल गए ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में
0: तो अपन का के वो चाहते कि कैसे हो चाहिए अभी के सब का
1: जब जो हो चाहिए शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं आए प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति नहीं आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति नहीं आए
0: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
1: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में ओवर का जो काम नहीं कर प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
0: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा टका खर्च ना उज्जे
1: हाँ घरे पैसा रे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा को काम नहीं
0: तो अपनो का के वो है रेडियो में जो भी आप सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाची और कैसे रहे चाची आपका कंचाओ सब जनन से आपको का के वो है
1: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे बाप मताई की सेवा करें
0: तो वही बात तो, बड़ी बात तो, मतलब शुरू से आप बताओ
1: यात्रा ना कछु
0: हाँ यही बात आप यही बात पूछना चाहो शुरू से बता दो आप आप का के वो चाहते
1: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान को माने सब इज्जत ले प्रेम ले लक्ष्मी जी ले सब मतलब नहीं के रूप है बाप मताई को ठुकराओ तो तुम्हारे बाल बच्चे ठुकरा मतलब आगे चली जाइए तो मतलब
0: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
1: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे नहीं करते जाकर है जो मतलब है जब कहते चले जाओ पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं जाता तो कहाँ जा रहा है क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है टेंशन बन जाए तो अच्छी बात है
0: और का के वो चाहू था
1: जी उचाउ आराम चाहू बस मिल जावे टेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को समान खाने दीवे 3-4 महीना मिले गए तो अपने उम्र खाद चलाते हैं
0: ठीक है दादा जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारों धाम कर हैं और भैया ये तो बातें अपनी अबे हती सो सब जन ने सुनिए ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे उन्हों को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में कहा का गौवा के गोबर मंगाओ यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने चौक पुरा रही है और शुभ संदेश की बातें कर रही है और संदेश दे रही है।

मैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गाए है उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाए। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

तवैया अवे सुन रहे थे जो कार्यक्रम सुनो जी का केर है। ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आओ थे कार्यक्रम को सुनो जी का केर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बतावें, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावें भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हो जाए, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को। तो नमस्कार।

काकेरे अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काकेरे।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार और कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे
2: हैं? दीनदयाल बोल रहे हैं सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं?
2: ठीक है सर, बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: सर सुनवा लीजिए, वो गीत है ऊंचे पहाड़ पे मैया बैठी रतनगढ़ वाली।
1: ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: हाँ जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करें।
2: ठीक है सर।
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पास, ऊपर वाले के पास है, और सब बहुने वाले हो गई, पानी आने लग रहा हो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बंदली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो?
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में?
1: हाँ।
0: चलो ठीक है। अच्छा गीत के बोल बता पाए आप?
1: एक गीत कोई गाओ सुना दीजिए थोड़ा।
0: चलो
1: बोल तो, हाँ बोल, याद नहीं आ रहे।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनवाए।
1: ठीक है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो एक बार

नाद या भागा। भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सच जाने से पुरारे अपनी हवा हवाई में।

कहना है कि मांग लाल है बिंदिया फाल है कंगना कलाई में और चंद छबी मुख चंद विराज गोरा।

0: बुंदेलखंड नंबर 10 नंबर 4 है।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरी गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
1: जुगियाई से सतीश साहू जी?
0: जी हाँ सर।
1: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
0: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है?
0: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
0: ओके सर,
1: नमस्कार भैया जी।
0: नमस्कार।

0: माता सिंह भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो वाला भजन सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथी मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही भजन सुना दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवा रहे
0: हैं। धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

कार्यक्रम मेरी मुंडली मेरे बीच से अपने दोस्त माता दिन खुद जाने की अनुमति साथियों अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात एक बेरा पे एक कार्यक्रम में जब तक के लाने नमस्कार।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अब करो भरोसा हर पे, अब करो भरोसा हर पे, करो भरोसा हर पे, ना करियो अपने घर पे। अब करो भरोसा हर पे, करियो ना अपने घर पे। तोरी पीर भू लगे हैं पार, तोरी हरी लगे हैं पार, मतलब की दुनिया सार, तोरी हरी।

जन्म लो सो जाने राजा रंक सबई के लाने उते न चल है एक बहाने दीने जन्म लो सो जाने राजा रंक सबई के

नहीं जात वह हाट बजारे, नहीं जात है मेला, वही जात है हाट बजारे, वही जात है हाट बजारे,

0: हेलो हेलो हेलो सर जी, आवाज आ रही है क्या? हेलो, लगता है श्रोताओं सर की आवाज आ नहीं रही है। पता नहीं क्या नेटवर्क में दिक्कत है, क्या है, देखते हैं। और जहाँ की बात हो रही थी आज के दिन की, आज दिन है सोमवार, 5 अक्टूबर का दिन है, और फिर से कॉलर जुड़ रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो,
1: हाँ भैया, नमस्कार।
0: नमस्कार भैया, नमस्कार। योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: अच्छा, और क्या हो रहा है?
1: अभी तो जस्ट खेत से आया हूँ भैया, और अभी घर में हूँ
0: अच्छा, क्या
1: जी।
0: खेत में क्या तिली वगैरह की कटाई चल रही थी, क्या हो रहा था?
1: नहीं भैया, हम तो सिर्फ धान लगाए हैं,
0: अच्छा
1: और धान में निंदाई कोड़ाई काम अभी अंतिम अवस्था में है
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी।
0: तो कैसी, क्या अभी आई कि नहीं?
1: क्या चीज भैया?
0: धान की खेती कर रहे हैं ना अपन।
1: हाँ
0: हाँ, तो कैसी? अभी तो धूप बढ़िया निकली हुई है।
1: हाँ धूप है भैया, लेकिन एकाध बारिश का थोड़ा बहुत जरूरत है
0: अच्छा,
1: जी। जी
0: तो भगवान से यही मांगते हैं कि बारिश हो जाए, नुकसान किसी का ना हो, हमारे किसान साथियों को मुनाफा रहे। तो
1: जी जी
0: भैया, और क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: फिल्म हिमालय की गोद में से सुनवा देंगे, चांद सी महबूबाहों मेरी तो
0: अच्छा,
1: जी।
0: घर पे हैं आप अभी?
1: हाँ भैया, घर ही में हूँ।
0: सब लोग कुशल मंगल? सब लोग ठीक हैं?
1: सभी अच्छे हैं भैया
0: चलिए, भगवान से यही उम्मीद है, आपसे भी यही उम्मीद है। और कार्यक्रम कैसा लग
1: जी।
0: रहा आपको? आज जुड़ गए हैं आप, आपकी फरमाइश में।
1: बहुत जी, बहुत बढ़िया लगता है भैया, बहुत से मित्र जुड़ते हैं, सब अपनी बातें बताते हैं,
0: चलिए
1: काफी
0: चलिए,
1: अच्छा लगता है
0: आज का
1: जी
0: दिन तो आप ही लोगों का होता है, आपकी फरमाइशें
1: जी
0: चलती हैं।
1: जी जी
0: तो चलते हैं भैया गीत की ओर, आपका पसंद का गीत, चांद सी महबूबा हो मेरी।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं एक बार फिर से वापस आ चुके हैं आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर। चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो बुंदेली खान, नमस्ते सर।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? अपना परिचय दीजिए।
1: मजे में अच्छे सर। मैं गीता राम बोर से डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और बताइए क्या चल रहा है?
1: बस हमारा छुट्टी से समय चल रहा है सर, और एक साल को हमारे महाराष्ट्र के अंदर दुष्काल हुआ है सर। दुष्काल मुख्यमंत्री ने पुकारा है सर, दुष्काल हो गया हमारे। बहुत दिक्कत है सर पानी पीने की।
0: अच्छा
1: जी सर, जी सर, जी सर।
0: हाँ अभी आपसे कनेक्ट हुए थे लेकिन आपका क्या नेटवर्क वगैरह से जुड़े नहीं, आपकी आवाज नहीं आई।
1: जी सर, जी सर, जी सर।
0: नेटवर्क क्या दूर है क्या टावर वगैरह वहाँ से?
1: हाँ सर, जी सर, दूर है, दूर, बहुत दूर है सर टावर।
0: अच्छा जी, और क्या हो रहा है, कहाँ पर हैं? घर पर हैं?
1: खेत में रहते हैं सर, खेत में काम करते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं सर हम।
0: अच्छा जी, तो कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम आपको?
1: तुमको तुम्हारा कार्यक्रम बुंदेलखंड के शानदार बारदार दर्जेदार गुंदर कार्यक्रम होते हैं सर।
0: धन्यवाद, धन्यवाद सर, आप लोग श्रोताओं की वजह से ही मुमकिन है ये। और बताइए आज की क्या फरमाइश है आपकी?
1: मुझे हलो फरमाइश में सुनना है फिल्म का नाम है आशा, और गाने के बोले शिशाओ या दिल टूट जाता है, टूट जाता है, ये गाना सुनना है सर मुझे।
0: आपकी आवाज ही बहुत प्यारी है सर।
1: धन्यवाद सर।
0: तो चलिए श्रोताओं बढ़ते हैं गीत की ओर। शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, लता मंगेशकर की आवाज में। तो
1: जी सर,
0: बढ़ते
1: जी
0: हैं
1: सर,
0: गीत की ओर।
1: जी सर, जी सर।

हेलो, नमस्कार। हेलो कुमार राजपूत, राम उप्रकार, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ सर।

बढ़िया है। और इस वीडियो का मजा ले रहे हैं। गांव है गांव। जी, हाँ जी, बिल्कुल। और बढ़िया, मोरा फिल्म का कोई भी गीत चला दीजिए सर।

0: हेलो।
1: नमस्कार नमस्कार रामपाल जी, कैसे हैं आप?
0: नमस्कार नमस्कार, आदरणीय हर्ष भैया जी, आपको सादर
1: बिल्कुल
0: प्रणाम।
1: बिल्कुल सही
0: नमस्कार।
1: समय पे आपने कॉल किया, क्योंकि हमने कार्यक्रम क्लोज करने ही वाले थे, बंद करने ही वाले थे, अनाउंसमेंट कर दी थी हमने जी। बड़े टाइम

0: करें सर जी, थोड़ा समय मिला अभी, हमने सोचा कि चलो कार्यक्रम में शामिल होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताइए क्या हो रहा है?
0: समय अपना कृषि का काम चल रहा है,
1: अच्छा
0: तिली तिली का काम कुछ रह गया वो चल रहा है।
1: अच्छा, बाकी कटाई वगैरह हो गई है?
0: हाँ कटाई हो गई, तिली घर पर आ गई है, लेकिन वही थोड़ा काम है तिली का कि छत पर उसको रख रहे हैं और कहीं हला रहे हैं उसको, तिली को निकाल रहे हैं।
1: तो आज आपकी फरमाइश क्या है, हम आपके लिए क्या प्रस्तुत करें, आप बताइए।
0: सर जी गीत उसका सुनना चाहेंगे, मूवी का नाम रहेगा
1: जी
0: मुकदमा।
1: मुकदमा।
0: जी,
1: गाने के बोल क्या रहेंगे?
0: रंग बिरंगी चूड़ियां तेरे दिल को चुरा लेंगी।
1: अच्छा जी, किसके लिए गाना सुना रहे हैं आप ये?
0: ये अपनी पत्नी के लिए सुन रही है।
1: अच्छा जी, बगल में बैठी हैं क्या?
0: लग रहा है आपको कि ये वो सुन रही है कार्यक्रम।
1: हमें भी लग रहा है कि बगल में बैठी हैं भाभी जी।
0: कार्यक्रम सुनते रहते ना मैं सर
1: जी जी
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैम का बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो से जुड़ने के लिए। और बाकी सब ठीक है, तबीयत
0: बाकी सब
1: वगैरह?
0: ठीक है, कुछ दो लाइनें जल्दी से कह दें।
1: जी
0: मीठी सी खुशबू गुलाब के साथ,
1: जी
0: छोटी सी हंसी मजाक के साथ,
1: क्या बात है,
0: और आप हमेशा खुश रहें हमारी दुआओं के साथ।
1: अरे बहुत बहुत बहुत बहुत खूब, बहुत खूब रामपाल जी, बहुत उम्दा, क्या अर्ज किया है आपने।
0: जी
1: तो
0: सर,
1: इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं आपकी फरमाइश रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, मुकदमा पिक्चर का ये गीत। तो बढ़ते हैं गीत की ओर। रामपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, देर से ही लेकिन आए तो जरूर।
0: सर जी हमें रेडियो पर सब सब लोग हमें राजू यादव बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम भी याद रखेंगे राजू यादव
0: जी
1: बुंदेलखंड
0: जी सर
1: को।
0: जी, ओके सर जी, प्रणाम
1: चलते हैं गीत की ओर।
0: जी, नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इवेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में
1: और भैया कासीराम के संग में।
0: और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन्म के लाने जो कार्यक्रम कप्ताएं। जी हाँ दोस्तों, कप्ताएं कार्यक्रम में अपन सब जने सुनत हैं कवि भैया की लिखी है कप्ताएं को। सो आज भी अपन भैया अपन कप्ताएं को सुने जो कबीर जी की लिखी हुई कप्ताएं है।
1: माता दीन भैया, अपन ने कविता को नाव लो, वो कविता को जब नाव लो तो अपने मन में तो खुली हुआ
0: बिल्कुल
1: काहे कि कविता जो बात अपन ना तो देखो मौसे के पाउता है।
0: सही कह रहे, सही कह रहे,
1: और ना वो बात को अपन उपकार कर पाउता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन जो देखो अपने कवि भैया ने, वो कवि जो हो गए उनने ऐसी रास्ता कविता के माध्यम से वो गा के बता दी थे कि पूरी लाइन
0: जो भी बात उन्हें कने आऊ बाबे अपने कविता के माध्यम से दर्शा दे अपन तक पहुंचा दे। ऐसे जाधी कही गई कि जा ना पहुंचे रवि जा पहुंचे कवि।
1: तो जैसे भैया कहे कि जो कविताएं हैं और जो कवि हैं जो अपनी बात को बिल्कुल भैया नेके से ऊपर तक पहुंचा देते हैं और जन जन तक जानकारी हो जाती।
0: सही बात है।
1: अब माता दीन भैया के देखो समाज हुए,
0: हाँ बिल्कुल,
1: काम हुए,
0: हाँ,
1: या कोनो समय हुए,
0: सही कह रहे,
1: तो उमे हर जाना अपने कवि अपनी कविता के माध्यम से बता दे।
0: हाँ, ऐसे अच्छे अच्छे संदेश भी दे दे जो अपने जीवन में काम आवे वाले बातें हैं वे अपनी कविता के द्वारा अपने काव्य के द्वारा लिख के और समाज में पेश कर देते भी, जिसे के समाज सुधरे, हम सुधरे, आप सुधरे, अगर सदमार्ग पे चलें, वे सदमार्ग की बातें हैं जो कवि भैया भी लिख के और अपन सब जनन तक पहुँचा उठे।
1: देखो अपन ने जब बात कही जो सासों मास की साजी है काहे के अब जैसे समाज में बैठे या घर में तो काओ तो देखो हमें कछु काओ से भैया लान देने न देने
0: है? सही है।
1: हमें काओ से तो फिर उनने देखो कितने अगर जा बात अपन मोसे के रहे कि हमें काओ से मतलब है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: जो कबीरदास जी ने कितने अच्छे तरीका से कही।
0: हाँ हाँ, कबीरदास जी लिख रहे हैं कि कछु लेना ना देना मगन रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना, और लिख रहे आगे कि पांच तत्व का बना पिंजरा जा में बोले मेरी मैना।
1: अब देखो काहे के भी का कह रहे कि हमें काउ से कछु लेने नन्या और ना हमें काउ से देने आना। तो का बोले कि पांच तत्व यानी जो शरीर है अपनो,
0: हाँ।
1: वो देखो उन्हें कितने एक ही बात में बता गई कि जो अपनो शरीर बनो है वो पांच तत्व से बनो बनो।
0: हाँ, बिल्कुल। और उन्हें इसके आगे लिख रहे कि गहरी नदिया नाओ पुरानी, गहरी नदिया नाओ पुरानी, हर के बटिया से मिलना हमें लेना, के बटिया से मिलना। कितनी बढ़िया बात।
1: अब कहे गहरी नदिया नाव पुरानी, वातन वातन में कहे गहरी नदिया नाव पुरानी और केवटिया से मिले रहना। केवटिया से मिलते रहना। का कह रहे देखो कितनो एक ही लेने में बता रहे राहगीर खां और आम जनता का।
0: बिल्कुल
1: कहे भैया सुनो, बहुत ही गहरी नदिया है

0: नए हैं हरी और जा भी संग लिखे है कि देखो जा नाव भी पुरानी है
1: बिल्कुल
0: जा नाव पुरानी है नई नोई है
1: हाँ
0: और पेड़ तो रहे तुम जातन घुसतन पहले उनने एक ही शब्द में कही कि गहरी नदी जा नाव पुरानी और केवट गया से मिले रहना
1: मिलके रहना
0: है काय के है मिलके काय रहना के भैया तुम इतने जा रहे हो कोनु अंदेशी भाई बात है कि नाव पुरानी है और या सुना हुई के कछु
1: सही है
0: संदेशी की बात आ जाए तो पहले कह दई कि तुम केवट भैया से मिल के रहना ऐसो हो सकत
1: बिल्कुल
0: उस सही बात का कितने उनने तरीके से अनुयायी बढ़ा दे
1: हाँ बिल्कुल सही बात है और आगे जो लिख रहे हैं कि तेरा पिया तेरे घर में बसत है तेरा पिया तेरे घर में बसत है सखी खोल कर देखो नैना
0: अब एक ही बात में देखो कितने ऐस बता दे भैया है
1: हाँ
0: तेरा पिया मेरे घर में बसत है
1: तेरा पिया हा? तेरे घर में बसत है सखी खोल कर नैना देखना नैना और कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु के चरणन में लिपते रहना
0: कितनी नौनी बात देखो अनाई से और उनने देखो एक ही बातन बातन में जी बात खा अगर अपन कह नहीं पाओ
1: हाँ
0: कह नहीं पा रहे वो बात का न सुझाव दे पा रहे हैं वो बात का लेकिन कबीर एक ही लेन में एक ही शब्द में ओते बात को पहुंचा दे
1: बिल्कुल उन्होंने गुरु की बात कितनी बढ़िया कही कि गुरु बिन ज्ञान तो हो ही नहीं सकत इसे उन्होंने कही के सुनो भाई साधु कहें कबीर सुनो भाई साधु गुरु के चरणन लिपटे रहना और जा में बोले मेरी मैना
0: अब मैना की बात कही जो देखो एक अंगाई की बात कहें कबीर सुनो भाई साधु अरे बेका के कहें कबीर अरे जो लेखक हैं बेका के वो भैया जो साधु हैं जो उनके पद पे चल रहे जो आज भैया समाज में बैठे हैं उनसे कहा बोले कि सुनो भाई साधु गुरु के चरण में लिपटे हैं यानी जो मार्गदर्शन करता है अपना
1: हाँ।
0: जो मार्गदर्शन कर रहा हो अपन खा जो आगे की घेल बता रहा हो अपन खा तो भैया उनके संपर्क में अपन खा लेने
1: बिल्कुल वही गुरु है
0: वही गुरु है कि नहीं
1: और कहावत भी कही गई है बूढ़े पुराने के बिना गुरु के तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं हो सकत कोनो गुण नहीं मिल सकत
0: अब देखो बिना संगत की भैया और बिना कैतब को तो कछु बात ही नहीं है लेकिन जब कहू बिगड़ जात बात
1: अगर
0: ये बातें तो बात जो कही है कबीर जी ने कि इनकी संगत में ऐसे कितने पूर्ण पग धन्य तो अगर कोनो बात ई बातन के अलावा बिगड़ जाए तब
1: बिगड़ी बात
0: कैसे बने
1: सही कह रहे तेरी बिगड़ी बात बन जाई
0: हाँ
1: कितनी बढ़िया बात लिख रहे कबीर दास जी
0: कि तेरी बिगड़ी बात बन जाई हरी नाम जपाकर भाई इतने नौने शब्द हैं
1: सही
0: और शब्द के संगे संगे सम्मान लगाते हैं
1: हाँ
0: और उनको एक आइडिया बताते हैं अब का बताया कबीर जी के कैसे तुम उपले
1: हाँ अगर तुमने हाँ। जो अपने जीवन में कछु अच्छे काम नहीं करे कोनो घट काम करे अगर आपकी लेन बिगड़ गई आप भगवान में या फिर भक्ति में आप अपनो विश्वास नहीं रख रहे तो अगर अपने जीवन को सफल बनाने हैं जीवन को सफल बनाने हैं तो हरि नाम जपा कर भाई
0: अब का है कि एक मार्गदर्शन उनने बता दो
1: हाँ।
0: और मार्गदर्शन के संगे संगे और जो भी बता दो कि का करने कि स्याही सफेदी आई एक स्याही ही सफेदी आई और फिर क्या बनेगा
1: जब तुम्हारी सफेदी आ जाए शरीर पे फिर तुम पे कछु नहीं बन रहे हो अगर आप वृद्ध हो गए फिर कोनो काम के आप नहीं रहे इसे कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि तेरी बात बिगड़ी बात बन जाई और हरि नाम जपा कर भाई
0: एक ही बात में भैया उनने संदेश दे दो का के दे कि अगर भैया देखो समझ में आ रही या तो अपनी आई रही कि अगर बुढ़ापो आ गो मूड़ पे बाल सफेद हो गए
1: सही कह रहे
0: और जब सफेदी आ गई तो फिर का कह सकत

0: ना तो भैया की काम में काए, ना तो अपन काम कह सकत, और ना फिर कोनो कोनो काम नहीं कह सकत। अपन सोचत रहे हैं, कहा सोचत रहे कि अब फिर कर ले, अब फिर कर ले, अब फिर कर ले। तो सोचत सोचत में देखो उम्र भी नशा जात,
1: सही कह रहे,
0: उम्र नशा जात और समय नशा जात,
1: बिल्कुल
0: है। कविता में जो भी कही कि इनकी उम्र भी कर ले और समय भी कर ले, लेकिन अपन जिते अपन कहा पहुंचने हैं उतने बिल्कुल नहीं पहुंच सकते,
1: सही कह रहे।
0: आगे कहा कह रहे देखो राम नाम के बड़े आसरी,
1: है कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं।
0: राम नाम के बड़े आसरी आलसी और तुम्हारी मती गई बोराई, राम नाम के बड़े आलसी गई मती बोराई।
1: अगर आप राम नाम के आलसी हैं तो समझ लो कि आपकी मती बोरा गई।
0: देखो कहने को मतलब कवि जी को कहा है कि जो काम तुम्हें करने,
1: बिल्कुल
0: जो कर्तव्य तुम्हें करने, अगर वो पग से समय, अगर वो पग से अपन तनके ही विचलित हो गए, ठीक है ना, तो फिर वह मती जो अपनी बोरा गई वह फिर अपने लाने एक भैया बहुत ही खराब,
1: बिल्कुल
0: जिते जोन अपन खा जिस जगह जाने हैं तो उते अपन है ना पहुंचे,
1: सही कह रहे, सही कह रहे। और सुनो तो कबीर जी लिख रहे कि आप भूले काय में रख जावा, तो ने एक बहुत बड़ी बात लिखी, दुनिया दौलते माल खजाना। देखो ये कह रहे कि ये दुनिया है जा दौलत में माल खजाने में और बदिया बैल उगाई में,
0: भैया
1: भी दे रहा था आप
0: काग है जो भी देख रहे कि दुनिया दौलते माल खजाना। अरे जो संसार है, जो भाव सागर है, हर आदमी का है,
1: यही में भी दो,
0: यही में भी दो, हाय पैसा हाय माल खजानो, और कागज जांगा की बन जी हमारी जासो बीगा की बन जा है, ये हमारे
1: बैल हैं,
0: बैल हैं और जे बदिया हैं वो जे गंग में,
1: सही कह रहे।
0: एक ही लेन में बुक का बोले के जो कछु नन्या,
1: हाँ तुम्हारा कछु
0: नन्या, कछु नन्या हम जानी माया
1: संग चलेगी।
0: अब कभी ये कह रहे कि जब भैया बुढ़ापो आ गए और बुढ़ापे की तुमने सब कछु कर लो वन कछु नहीं कह पाओ,
1: सही
0: तो फिर जो भी है कि उतने जब जान लगे तो फिर अब का कह रहे हम तो जानते
1: कि माया संग चलेगी
0: है, का जानने लगे जब प्राण आखिरी पे कि हम जाना संग, हम जाना काया संग चलेगी,
1: हम जानी माया संग चलेगी और सबई यहाँ रह जाई,
0: नहीं जावा जब जानत आए कि जो अपन ने जो माया जूर जूर के धरे वो धरी है तो कहे कि अपने संग चे जे जा, लेकिन ऐसो भैया कछु ही नहीं, ऐसो
1: कछु नहीं,
0: बिल्कुल कछु नहीं, भाई बंद और कुटुंब कबीला,
1: देखो कितनी बड़ी बात है।
0: अरे भाई बंद और कुटुंब कबीला काम ना आए कोई आई, देख रहे तुम, भाई बंद कुटुंब कबीला काम ना कोई आई,
1: खाए खोए भैया
0: देख रहे
1: तो अकेले जाने
0: उते तो
1: सब तही रह जाने, तही भाई तही बंधु तही कुटुंब तही कबीला सब कुछ तही रहने। तो कबीर भैया जी ने बहुत ही बढ़िया जा बात लिखी है कबीर दास जी ने के भाई बंधु कुटुंब कबीला काम न कोनो आई, को काम नहीं आई है, इसे हरि नाम जपा कर भाई केवल संग के लाने। एक ही बात बताई उनने, ना तुम आओ दौलत ना माल खजानो ना कुटुंब ना कबीला ना भाई ना बंधु को संग नहीं जय, केवल संग जय है तो काजे है हरि नाम जपा कर भाई।
0: और संग देखो का सोचत रहे कि उनने जो कछु बताओ है अपन का और जो उनने मार्गदर्शन दाए हैं, लेकिन कछु नहीं कैसा कि सुगा पड़ावन गन का तारी, सुगा पड़ावन गन का तारी और तर गई मीराबाई,
1: बिल्कुल
0: उनने संगे जा भी कही कि जिन जिन भंजन ने जिन बेनन ने और जिन लोगन ने इनके आदर्श था चलो है वो जिनने मन लगा के या कोनू बात मानी है या कोनू कथा सुनी है तो वे तर जात या वो मार्ग पे पहुंच जात, जैसे सुगा अरे

0: गाता रहे। अरे पिता काऊ ने भागवत या कोनो चीज सुनी तो सुन सुन के सर जा। और संगे मीरा भाई का जो लगन हती बावन की पूरी हो।
1: सही बात कह रहे हैं। और एक के संगे संगे कबीर जी ने और देखो कालिख रहे कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तर गए सदन कसाई।
0: अरे भैया का बात है, अपन ने देखो तो इतने नोने तरन एक शब्द कैसो नोनो आगा के तर गए तरन कसाई।
1: तर गए सदन कसाई, सदन कसाई की कथा बहुत ही बढ़िया कसाई है।
0: हाँ।
1: कि सदन कसाई का काम करते काशीराम भैया जी वे अपनो का है के उनको काम हतो कि चोरी डकैती करके लूट माट काट करके और अपने घर को कम खर्च चलाउते। तो एक दफे की बात है कि जब वे लूट मार करके अपनो जो काम चलाउते वो घर के सभी सदस्यों को खुआते कमा कमा के। तो एक बेर भगवान जी उतर से निकले और भगवान जी ने कही कि आदमी को एक अक्ल तो थोड़ी बहुत देना चाहिए कि जब तुम जो काम कर रहे गलत काम और तुम्हारे गलत काम में तुम्हारे घर के भागीदार है कि नहीं है। सो भगवान जी उतर से निकले सो उन्हें कही के जिनने ऐसे भगवान को खेला पत्रा सा फड़ा छुड़ू लाओ। सो उन्हें कही के भैया तुम जो लूट मार काट करके कहा ले जा, उनके अपने घरे ले जा तो और अपने घर के परिवार को खुआ पियाओ तो हमारे घर की आजीविका चल रही। सो इन्हें कही जा बताओ कि हम तुम्हें सब दे रहा हूँ, चलो ले जाओ तुम, लेकिन तुम अपने घरे जाके और जितने जनन को खुआ पियाओ थे उन सब से जा पूछो कि हम जा हाय हत्या को ले आ रहे, मार काट करके ले आ रहे, तुम्हारे हमारी पाप में भागीदारी हो के नहीं है। ठीक। सो भैया जी गए बोले यहाँ तुम भाग जाओ, हम ना भागे तो हमें पेड़ से बांध दू। सो फिर वे बोले हाँ बांध दो। अब बांध के जे घर गए घर घर भाई से पूछियो सबसे लड़का बांध से पूछी काय भैया तुम्हारे जा बताओ कि हम जो हाय हत्या को ले आ रहे हमारी पाप की भागीदारी तुम्हारे बनो के ना बने। तो घरवार बोले हम काय को तुम्हारे पाप की भागीदारी बने, तुम कर रहे पाप से तुम भोगी।
0: माता दीन भैया इतने तनक कछु बात का है कि उनके दिमाग में जो कसाई है तो वो उनके दिमाग में का हती कि जो जो घर है हमारो और जे जो मोड़ी मोड़ा है ये सब हमारे यहाँ और ये सब मतलब जो कछु है तो ये कई माया जान लगती है कि हम जो काम कर रहे हैं तो ये सब हमारे संगे जी और संग के हमारे भागी हैं, तभी तो वो मार काट काट करके गलत काम करके लिया।
1: सही कह रहे
0: हैं। अब उनके दिमाग में काफी बज जा कि वो जाना नहीं तो इनको परिणाम
1: का भुगतना
0: भुगतना।
1: तो फिर एक बार फिर का भाव कि जब फिर उन्हें फिर छोड़ दो वो सब काम न मार काट करी न कछु करी
0: तो उसे ऐसे का भाव कि जब भी पूछ भी आए भी पूछ भी आए कि काय बजा हो जो हम हाय हत्या हो जो मार रहे हो जो काट रहे और जो हमें जो पाप मिलने या जो हमें कीड़ा पड़े या जो हमें
1: सजा मिले
0: तो देखो सब जने खा रहे
1: आप सबको भोगने
0: काय भैया अपन कभी सब्जी भाजी ले आओ तो घर में सब्जी ने खात के नहीं
1: बिल्कुल
0: अपन काम धंधो करके ले आए तो सब्जी ने खात के नहीं।
1: सही
0: है लेकिन उन सदन कसाई को भी वो सही है तो
1: हाँ।
0: हम ले आ रहे तो जा बताओ
1: कि तुम्हारी के भागीदारी हो
0: इनके मतलब जो हमें लाभ मिले या जो हानि मिले या जो कुछ मिले तो क्या तुम इनकी भागीदारी हो के नहीं। तो देखो भैया का जवाब मिलो सब जनन ने भैया
1: सब जन ने यही कह रहे कि हम नहीं है भागीदारी।
0: तो उन्हें जब सब जन ने हाथ खड़े कह दे कि भैया काम तो तुम कर रहे तुम भोगो
1: जब फिर उन्हें कही के अब हम आज से बंद कर और बंद करके भी एक तला के किनारे एक बरिया के पेड़ की तरफ बैठ गए
0: बैठ गए।
1: सो उते काहे के एक में तलजा में पानी भरो तो सो एक आदमी लगाए तो का ढेकड़ी पानी पीवे खोते आती डोंकियां वो डोंकियां के चक्कर में ढेकड़ी लगाते होते और तलजा में ढोर जाते पानी पीवे सुने के अगर ये ढोर इतने पानी पीवे आ रहे तो वे डोंकियां उड़ी जाती और हमारी बार ढेकड़ी लगी सुबह छटक जाती उन्हें ढोरन को पानी नाफियन दे वो
0: अच्छा वो जो घेरे हैं तो वो पानी जो पानी घेरे हैं तो बिल्कुल

0: भगाले ढोर।
1: अरे भैया
0: आप जब सदन कसाई ने देखो थे सबके मन में आए के इतने पाप करे तो एक और सही
1: अचानक की सौ सौ गए तो एक
0: भी भैया का भाव के उनने जैसे में ढोर भगाए से ने भगा भी बाय में दस से उगे वो कह दो सब लुआ ने कर पानी दम से पियो। अब जब उनने पानी पियो सो दही असी
1: आप देखो भैया कभू कभू का हो के दूसरे के प्रयोग का कर भी से तो भैया जो तो अपन जानते ही हो सभी जने जानत के खुद को
0: जब उन पशुओं को पुण्य मिलो
1: आशीष
0: हाँ आशीष जब मिलो
1: हर सांस लेके
0: हाँ जब सदन कसाई के सब रे पाप कट गए।
1: लेकिन भैया फिर
0: ऐसे कबीरदास जी ने कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधु
1: तरी गए सदन कसाई और हरी जपा कर भाई जी हाँ। ये भैया हरी को जपो जिसे अपन खा आगे की रास्ता खुले और जावी कही के सुगा पड़ावन गन का तर गई तरी गई मीरा भाई
0: हाँ।
1: देखो भैया ये काम जब तक अपन अपनों का तब ना करें तब तक अपन खा
0: बिल्कुल
1: वो चीज को लाभ ना मिले तो ऐसा ही है
0: सही
1: आखिरी पे तो हम देखो कबीरदास जी का कहे के भैया एक काम करो फिर वे उनने ये कहीं मन में अपनाओ
0: हाँ
1: सदन कसाई जब होते से आए उनने कही जब भैया हम भरवाओ को नहीं कर दे रहे संग ना को दे रहे हो तो अब तो भजो रे भैया
0: हाँ।
1: अब उनके विवाद में ये कही आ गई कि अब तो राम नाम भजो भजो रे भैया राम नाम गोविंद
0: हरि
1: जब आदमी धक्का खा जा
0: हाँ।
1: तब आदमी चोट खा जा तब आदमी की का कहना है समझ में आओ
0: हाँ समझ में आ गई
1: हाँ। जब सदन कसाई का ये बातें अपने घर ही से शिक्षा मिल गई उन्हें
0: सही
1: जिन्हें भी मार मार के काट काट के और ले जाते और उन्हें खबाऊ थे तब उन्हें भंजन ने का कह दी के भैया तुम कर रहे सो तुम ही जान
0: हाँ तुम्हें भुगतो
1: तो जब उनकी भी कुछ समझ में आ गई तो भी का फिर कबीरदास जी ने लिखो ऐसे लोगों की लाने के भज रे भैया राम गोविंदा हरि भजोरे भैया
0: हाँ।
1: भजोरे भैया राम गोविंद हरि
0: सही कह रहे
1: जब तप सघन कछु नहीं लागत जब तप सघन कछु नहीं लागत और खर्चन नहीं गठरी का कह रहे ना तो भैया ही में हमें कछु साधन जाने हैं ना हमें कोनो
0: खर्चा जाने
1: खर्चा जाने हैं और ना हमें ऐसी
0: गठरी सही कह रहे हैं बहुत अच्छी बात लिख रहे कभी
1: कितनी बढ़िया बात लिख रहे कि गठज्जा को मतलब के जब आदमी ज्यादा गठज्जा बांध ले चाहे कोनो काम की हो
0: सही कह रहे हैं
1: तो वो कहो कि गठज्जा तो बहुत बढ़ जाए
0: अच्छा उसको वजन धरे फिरने अब
1: और भैया काट अनाई काट लिख रहे कभी सतन शब्द सुख करण जासो भूल पड़ो संतन सभ्यन सुख के करण जासे भूल पड़ो
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिख रहे
1: हाँ
0: कि संतन सम्यक संतन सम्यक सुख के कारण संतन सम्यक सुख के कारण जासो भूल पड़ी ओ कहत कबीर राम ने जासुख कहत कबीर राम ने जामुख तामुख धूल भरी
1: ताम जोन भी मुखते
0: हाँ
1: जोन कैसे मुखते और कैसे कैसे लेकिन उनको भैया पल और कर्तव्य और समय की कीमत है
0: बिल्कुल
1: जैसो तुम करो और एक दिन ऐसा होने के जो मुख धूल में
0: हाँ। मिल जाने
1: सही कह रहा मिल जाने के नहीं मिल जाने अब देखो अब कितनी अब कछु तुम सो कछु नहा लो
0: सही कह रहे
1: कैसे ही नहा लो या कछु लगा लो
0: सही कह रहे
1: लेकिन अपने ऊपर चादर तो चढ़ गई है जो अपनी काया है या
0: सही
1: अपन मल मल के कछु धो लो
0: हाँ।
1: या कछु काम कर लो
0: बिल्कुल
1: जोन अपनी यह चादर है जोन अपनी यह खाल है जा तो पुरानी
0: हाँ कबीरदास जी बहुत अच्छी लिख रहा है बात को कि चादर हो गई बहुत पुरानी चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ अभिमानी चादर हो गई बहुत पुरानी।

0: ज्ञानी, अब सोच समझ अभिमानी, अजब जुलाहे चादर बीनी, अजब जुलाहे चादर बीनी, सूत कर्म की तानी।
1: देखो भैया, एक एक शब्द की काके रह गए, चादर हो गई बहुत पुरानी। अरे सोच लो, मतलब जब चादर है जोन, जब बहुत पुरानी हो गई, सोच लो और समझ लो।
0: सही कह रहे,
1: इतने कारो मन घमंड में रहो।
0: हाँ हाँ,
1: कविता में उनने कितनी अच्छी हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ ओ भगवान।
0: सही यार,
1: ये जो मन है, जो भाव अपनी भावनाएं हैं, जा इनके दिमाग और अंदर तो सोचो।
0: सही कह रहा,
1: अंदर तो सोचो कि अजब जुलाए चादर दीनी।
0: हाँ।
1: अरे खो गई तुमने आओ में ताओ में, और जैसे कछु बनो तो तुमने उस चादर का अपने हासिल कर ले, कर ले के नहीं, लेकिन सूत कलम की तानी। जैसे उनने तकली जब सूत काटत है तो काट काट में बिलाक हो जाता।
0: हाँ।
1: एक एक सूत सूत कर करके, जैसे अपन ने कहा बूंद बूंद से
0: घड़ा भरा। सही कह रहा, इसे और आगे लिख रहे हैं, सुरति नृत्य, सुरति नृत्य को भरना दीना, तब सबके मनमाही।
1: देखो हाँ। अरे जब सुरत है अपनी, जब जिज्ञासा है,
0: हाँ,
1: तो अपनो मन है।
0: सही कह रहे,
1: अरे इमें तो भरो कछु।
0: सही कह रहे,
1: ऐसी भरो के जो सबके मन को भाग।
0: हाँ।
1: जो सबके मनमानी, ऐसो तो नहीं है के तब सबके मनमानी। अरे ऐसा काम करें कि सबके मन में वो मनमानी, ऐसा तो ना करो, बस तुम स्वयं अपनी इच्छा का वो स्वयं अपनो भंडार कर ले, जो कछु कर ले, जो हवन्य कर ले।
0: हाँ,
1: और जो तुम, अरे जो सबे अच्छो लगे वो काम का
0: सही अच्छे करो,
1: दे रहे उपदेश, दे रहे वो काम का अपन करने हैं।
0: और का लिख रहे आगे कि मेले दाग पड़े पापन के।
1: भैया जे बात है, मेले दाग पड़े पापन के, विसरन में लिपटानो।
0: हाँ, विसरन में लिपटानो।
1: अरे ये जो कर्तव्य हो गए, जो कल है,
0: हाँ,
1: तो दाग लगाई गए।
0: बिल्कुल,
1: और तुम जो काम करिया है तो उनमें तो तुम लिपटे ही हो। जाना जानो कि हमने बढ़िया काम करके या खा के तुमने वो मुंह पोंछ लाओ तो हम हमारे भीतर कछु नहीं।
0: हाँ।
1: लेकिन जो कर्तव्य जो कर्म में तुमने कल लाओ तो उनमें तो तुम लिपटे ही गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और आगे का लिख रहे कि ज्ञान का साबन लाए ना धोया, ज्ञान को साबन लाए ना धोया, संत संगति के पानी है। हाँ, और भाई भाई खराब अब गई सारी, भाई खराब
1: अब गई
0: सारी।
1: देखो भाई खराब अब गई सारी, और लाभ मोह में सानी। अरे बीच क्या कह रहे, क्या बातों वगैरह जो तुमने सोच ली तो वो जो समय कर गया तो खराब हो गई।
0: हाँ,
1: भाई खराब।
0: हाँ,
1: तो अब जो काम कर लो तुमने उसमें तो तुम सनी गए।
0: हाँ, लोभ मोह में सानी,
1: जो जो लोभ मोह में तुम सन गए, जो जो चीज तुम्हारे दिमाग में है। हाँ। तो तुम सने गए, अब कछु नहीं हो।
0: और ऐसे ही उड़त उमर गमाई।
1: भैया जैसा तुम करो।
0: हाँ,
1: जैसो जैसो का तो उम्र तो कड़ा ही रही।
0: बिल्कुल,
1: और तुम्हारे ऊपर वो कहता बेचारा।
0: बिल्कुल, ऐसे ही उड़त उम्र गमाई, भली बुरी नहीं जानी, और शंका मानी जानी जिए अपने, शंका मन जानी जीने अपने, ये वस्तु बिरानी, जीने जा जान ले के जा वस्तु बहुत बिरानी है, जा अपनी नन्या, अपन तो जेतना है सो है, अपनी नन्या जाका है। तो कबीरदास जी बहुत अच्छी बात लिख रहे एक हूँ के कहे कबीर यूं ही राख जतन से, कहे कबीर यूं राख जतन से, नहीं फिर हाथ ना आनी, अगर जो जीवन निकर गओ फिर हाथ आवे भाव नन्या।
1: देखो भैया काहे जी आज की कवितन में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: और आज के इस ज्ञान में कबीरदास जी ने मार्गदर्शन बहुत अच्छा दे रहा
0: है। सही बात है
1: कि ना तो भैया अपन खा जा उम्र है जो खराब करने, और ना जो मोह है, जो लोभ है, ना ही में अपन खा, सीधी सीधी बात है जा

0: बिल्कुल
1: है, और ऐसा काम नहीं करने कि जो अपनी उम्र में और अपनी जो शरीर है जो कर्तव्य है ई पे अपन खा लग जावे और नाम पीछे या ला जावे या अपने ऊपर नाम कम जा के अरे वो फलाना भैया कैसो है।
0: बिल्कुल सही बात कह रहे। तो देखो काशीराम भैया, अभी के संगे हम आपको जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से अपनो जावे को अब समय शो हो रहा है।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो अपने साथियों से जो सुनवे वाला साथी है उनसे कहो चाहे कि ई कार्यक्रम में अगर जिते बात कम्बड़ भई होवे या फिर सदन कसाई की बात कछु और होवे और आप बात को जानत है कि सदन कसाई की जा कथा ई प्रकार से है तो आप हमें जरूर बताएं। कह के अपन को उतेक अनुभव नैया सदन कसाई की कथा को सो जो अपने सुनवे बाय साथी है वे जरूर अपन को बतावे।
1: भैया ई में जा बात नैया देखो गे गेरी गे उठली है।
0: हाँ
1: अपनो काम है भैया लो जितेक लो अपन जानत है।
0: हाँ हाँ
1: उतेक लो अपन ने संदेश दे दो और जो कार्यक्रम तो यही के लाने हैं कि भैया अपन कहा बताएं।
0: बिल्कुल।
1: और उन भैया को अपन बातन में शामिल करें।
0: हाँ हाँ
1: और उनकी जो कविताएं हैं जो उनके कहानियां हैं या जो किस्सा है वो अपन का भेज।
0: बिल्कुल।
1: तो भैया अपनो पतो और फोन नंबर बता दो।
0: जी हाँ काशीराम जी, भैया अपनो देखो पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा, और अपनो फोन नंबर है 9425147726। अब एक संगे अपने दोस्त माता दीन को
1: और भैया काशीराम को दो आज्ञा
0: नमस्कार।
2: शुभ कर्म बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
3: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
4: और मनीष कार्यक्रम आजीविका
3: में
4: बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: जी हाँ दोस्तों, आजीविका की बात जहाँ पर आती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार आजीविका है क्या। लेकिन हमने अपने साथियों को पहले ही बता दिया था कि आजीविका यानी कि हमारी।
4: बिल्कुल सही बात है वर्षा जी, और आप कहना चाह रही हैं कि आप अपनी आय को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं।
3: जी,
4: और कैसे हमारे श्रोता साथी, चूंकि बुंदेलखंड में हम आप देख रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे श्रोता साथी किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं अपना स्वयं का धंधा करके।
3: जी हाँ साथियों, जैसे कि हमने आपसे कहा भी था कि दूसरों की मजदूरी करने से अच्छी है कि हम अपना खुद का एक छोटा सा धंधा लगाएं यानी कि व्यवसाय लगाएं, जिससे हमें दो पैसे की आमदनी होगी।
4: बिल्कुल वर्षा जी, और बहुत सारे जब हम नुक्कड़ों के पास मिलने जाते हैं तो बहुत सारी हमें सफल कहानी हमें वहां पर मिलती है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे सफल लोग निकल के आ रहे हैं जिन्होंने रेडियो बुंदेलखंड पर आजीविका का कार्यक्रम सुनकर अपने खुद का व्यवसाय को शुरुआत की है। तो ऐसे लोगों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, उनकी सफल कहानियों को बताते हैं। जैसे कि हमने बताया था, पहले भी बताया था, सतीश साहू जिन्होंने अपना दूसरों के यहाँ नौकरी करने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है, तो एक ना एक कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आय को बढ़ाया है, दूसरों की अपेक्षा अपने घर की आय को और बढ़ोतरी की है।
3: जी हाँ, जैसा कि साथियों उन्होंने बताया था कि हम जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाते थे वो ऐसे में उन्हें क्या क्या परेशानी होती थी, एक तो टाइम से नहीं पहुँचते थे, घर टाइम से नहीं आ पाते थे, और दूसरी चीज उन्हें तनख्वाह जो मिलती थी, जो पैसा महीने का दिया जाता था, वो समय पे नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, हम कोई भी काम अगर करते हैं तो अगर वो पैसा हमें समय पे ना मिले तो किसी काम का नहीं होता है हमारे।
4: बिल्कुल सही बात है वर्षा जी, जब तक हमें स्वयं का व्यवसाय, चाहे वो हम 2 घंटे अपने लिए क्यों नहीं दें, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम आप देखते हैं कि 24 घंटे में से 12 घंटे दूसरों के मजदूरी करने के बाद हमें तनख्वाह वो 100 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए इस तरीके का देते हैं। हम उनके लिए जब मेहनत करते हैं, क्यों ना हम अपने लिए खुद के लिए इतनी सारी मेहनत करें कि हम सफलता को हम चलते चले जाएंगे और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर लोग हमें नाम से पहचानेंगे।
3: बिल्कुल, और सफल जब ही होंगे जब आप सोच लेंगे कि हमें करना क्या है आखिर, और जब आप करने का निश्चय कर लेंगे तो फिर हमें आप जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सके।
4: बिल्कुल वर्षा जी, और इस कार्यक्रम में हम दोस्तों को बात कराएंगे हीरालाल कोरी जी से, जिनसे बात करेंगे कि उन्होंने तौलिया का व्यवसाय, चूंकि बहुत सारे हमारे श्रोता साथी सोचते होंगे कि कुछ जातिगत

0: जो व्यवसाय रहते हैं वो उनकी ही जाति के लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें भी जाति बात से हटकर उस व्यवसाय को सोचना चाहिए।
1: यानी कि आपके कहने का मतलब है मनीष जी कि कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि मटका बनाना, तौलिया बनाना, ये बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये इसी जाति के लोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको उस काम को करने में रुचि है तो आप बिल्कुल ये सोच हटा दीजिए जातिवाद की कि ये यही जाति का करेगा, हम भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम अगर एक मटका बनाना जानते हैं और हम कुम्हार नहीं हैं, तो क्या हम अपनी रुचि को आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या हम उससे दो पैसे नहीं कमा सकते हैं? क्या हम अपनी रुचि को आगे ले जाकर लोगों को ये बताएं कि जातिवाद बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं?
0: बिल्कुल वर्षा जी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तौलिया का व्यवसाय, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि मऊ रानीपुर में सबसे ज्यादा तौलिया का व्यवसाय होता है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर अपने आसपास में तो निवाड़ी में बहुत ज्यादा तौलिया का व्यवसाय चलता है। तो ऐसे में किस तरीके से हमारे युवा साथी इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, तो इस चर्चा को सुनने से पहले हम एक गीत के साथ हम आपको मनोरंजन कराते हैं, और गीत के बाद आपको सीधा हम निवाड़ी ले चलेंगे और जहां पर हीरा लाल जी हमसे बात करने के लिए तैयार है। तो आइए इसी क्रम में एक हम गीत को सुन लेते हैं।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और दोस्तों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना जिसे गा रहे थे दयाशंकर और उनके साथी।
1: जी हाँ, अब हम आपको इंतजार नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा था कि मनोरंजन के बाद हम आपको सीधा ले चलेंगे निवाड़ी हीरा लाल जी के पास, जो कि आपको बताएंगे कि तौलिए का व्यवसाय किस तरह से किया जाता है और क्या क्या समस्या उनको आती है और क्या क्या सावधानी इसको करने में रखनी चाहिए।
0: तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अपना परिचय दें पहले।
2: हीरा लाल पूरी कालपुरा निवाड़ी।
1: अच्छा, तो हीरा लाल जी आप क्या करते हैं?
2: हम तौलिया के काम करते हैं, क्या मशीनें लगाई हुई हैं पावर लूम।
1: अच्छा, तो जैसे शुरुआत बात करें अगर, तो आप तौलिया कैसे, कहाँ से इसका माल लाते हैं, कच्चा माल कहाँ से लाते?
2: कच्चा माल आता हमारा रानीपुर से।
1: अच्छा, कैसा, किस हिसाब से लाते हैं?
2: जैसे धागा है वो तो 100 रुपए किलो भी आता है, 150 भी आता है। अच्छा। हर प्रकार का धागा खरीद के फिर बेलन भी भरवाते हैं।
1: अच्छा, तो इन सब में कितना खर्चा आ जाता है?
2: आप बेलन भराई जैसे 5,000 के आसपास तो बेलन भर जाता है, और फिर धागा उसके बुनने के लिए, माल बनाने के लिए वो अलग खरीदना पड़ता है।
1: तो ये सारा सामान आपको वहीं से
2: रानीपुर मिल जाता है।
1: अच्छा, फिर वहाँ से लाने में कैसा क्या आप
2: लाते क्या है? जैसे इधर से गाड़ी जाती है, गाड़ी में आता है माल,
1: गाड़ी में आता है। फिर वो धागा यहाँ लाने के बाद आप क्या करते हैं?
2: उसका धागा ले जाने के बाद पावर लूम पे जैसे बेलन रख दिया और धागा हाथ से गाड़ी भरती है, उसके बाद बस पावर लूम पे काम करो, कपड़ा बनने लगता है।
1: कपड़ा बने, कितने लोगों को आप लगाए हुए हैं?
2: हम जैसे एक मजदूर लगाए हुए, एक खुद करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी करते हैं।
1: अच्छा, वैसे अगर देखा जाए आप नहीं करते तो कितने लोग की जरूरत पड़ती?
2: जैसे 2 लोगों की पड़ेगी, जैसे 3 पावर लूम लगाए हुए हैं, घर का धंधा है ये। अच्छा, ज्यादा तो लगाए नहीं हुए हैं, जैसे ज्यादा लगाओ मशीन है तो ज्यादा मजदूर लगेगा, जैसे 3 पावर लूम लगी हुई है तो 2 मजदूर चल जाते हैं उसमें।
1: तो एक दिन में कितना आप बना लेते हैं तौलिया की बात करें तो?
2: एक दिन में तौलिया बन जाती है 40, एक मशीन पे।
1: एक मशीन पे 40
2: 40 तौलिया बनती है,
1: पूरी कंप्लीट हो जाती है?
2: कंप्लीट हो जाती
1: है। अच्छा, और एक महीने में?
2: एक महीने में आप इसका हिसाब लगा लो, जैसे 40 लगी एक दिन में तो थोड़ा कम प्रोडक्शन हो जाएगा। ये तो पहले का है, थोड़ा कभी लाइट भी नहीं रहे, कहीं कुछ वजह है, हिसाब से प्रोडक्शन कम नहीं हो सकता।
1: और जो मशीन आप लगाए हैं उसमें लाइट का कैसा क्या कनेक्शन आपने करवाया?
2: हमारा कनेक्शन है 3 फेज का, कनेक्शन कराई। हाँ,
1: तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाता है? जैसे आप कनेक्शन भी करें वो भी बिल भरना पड़ता है?
2: हाँ, क्यों नहीं मिलता, वो तो इतना तो मिल ही जाता है यदि परिवार चलाने योग्य।
1: अच्छा, अपना परिवार चलाने योग्य। और जो व्यक्ति आपके यहाँ लगा हुआ है मजदूर,
2: उसका भी परिवार चल जाता है?
1: कितना उसको देते?
2: उसको जैसे उसका हो जाता है 6 दिन में 1,500 के आसपास का।
1: अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे तौलिया बनाने से पहले?
2: तौलिया बनाने के से पहले क्या, जैसे पहले तो हम जैसे कोई दुकान टेलरिंग की खोले थे मार्केट में, सिलाई का काम करते थे। फिर दिमाग में आया कि पावर लूम लगा लो घर में, तो पावर लूम लगा लिए।
1: अच्छा, तो मशीन आप जो लाए थे वो कहाँ से लाए थे जी? पावर लूम
2: जी, मशीन ऐसा है कि जैसे इधर ही इधर बिकती रहती है, कोई नहीं करता धंधा, कोई कुछ और बदल देता है, इधर ही इधर मशीनें मिल जाती हैं।
1: अच्छा, नहीं तो अगर जैसे किसी को खरीदना हो जी मशीनें तो कहाँ से?
2: तो ये टांडा वगैरह जाना पड़ेगा, टांडा में है।
1: ये कोई समूह के द्वारा मिलती है या फिर?
2: हाँ, ये समूह के द्वारा भी मिलती है, अभी रानीपुर में जो है यूपी में।
1: हाँ,
2: आपको सरकार ने दी है 64 की मशीनें, बड़ी बड़ी, और मकान बनाने के लिए

0: लगाने के लिए व्यवस्था पैसा दिया है, 2-3 लाख रुपया दिया है। अच्छा। समूह द्वारा भी मिलता है, सरकार भी दे देती है।
1: तो समूह द्वारा अगर कोई लगाना चाहे तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा इससे?
0: हाँ, समूह द्वारा
1: सरकार पैसा देती है।
0: हाँ, उससे ज्यादा मशीनें मिल जाएंगी, उसको पूंजी भी मिल जाएगी, वो घर का बिजनेस करने लगेगा।
1: अच्छा, अब आपकी मार्केटिंग की बात अगर करें तो आपका बाजार कहाँ होता है, आप कैसे इसको बाजार में सेल करते हैं?
0: हम लोगों की मार्केट ऐसा है।

0: व्यापारी चला आया है, बहुत जगह ज्यादा माल।
1: अच्छा, तो आपको महीने में कितना इसमें प्रॉफिट हो जाता है?
0: महीने में वो ये 15-20 हजार रुपए की कमाई परिवार चलाने लगभग।
1: अच्छा, इसके अलावा आप और क्या करते हैं?
0: बस इसके अलावा क्या है, वही काम है।
1: अच्छा, कितने घंटे आप देते हैं इस काम में?
0: इसमें पूरा लगा रहते हैं, वो तो 10 घंटे करीब काम देना पड़ता है।
1: जैसे सुबह से उठे तो सीधा?
0: बस उसी में वही काम है और है क्या।
1: अच्छा, अगर कोई और लगाना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उसको क्या क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए?
0: और कोई लगाना चाहे तो सावधानी क्या, उसको पावर लूम चलाना सीखना पड़ेगा, जैसे नहीं जानता है तो उसको सभी सीखना पड़ेगा, तो धागे का काम है।
1: अच्छा,
0: तैयारी का काम है।
1: आपकी बात अगर करें तो आपने कहाँ से सीखा, कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी?
0: ट्रेनिंग क्या, हम इस काम को नहीं जानते थे, जैसे पावर लूम लगा लीजिए, कारीगर लोग कर रहे हैं काम, सुधारना भी नहीं जानते थे मशीन, तो वो धीरे धीरे कारीगर लोग चलाए, हम भी सीख गए।
1: बस पहले कारीगर लगाया था,
0: कारीगर लगाया, उनने किया काम, जैसे बिगड़ गई मशीन तो मिस्त्री बुलाया, मिस्त्री को देखा ये किस प्रकार का उधारता है, तो अपन देखते देखते अपन भी होशियार हो गए।
1: अच्छा, जैसे कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें परेशानी आती है, कोई ना कोई दिक्कतें आती है, तो आपको ऐसी क्या क्या परेशानी आई?
0: बहुत सी परेशानी आई थी हमको, जैसे उसमें कुछ जानते ही नहीं थे, थोड़ा भी कुछ बिगड़ जाए, थोड़ा चमड़ा टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो मिस्त्री को पकड़ते थे, उसको पैसा देना पड़ता था।
1: अच्छा, और अब अगर बिगड़ जाए तो?
0: अब तो खुद कर लेते हैं, सब
1: खुद कर लेते हैं। अच्छा, सब समझ हो गई है?
0: सब समझ हो गई है।
1: अच्छा, इसमें जगह कितनी की जरूरत पड़ेगी, जैसे अगर कोई लगाना चाहे तो उसको जगह की कितनी जरूरत पड़ेगी?
0: जगह के लिए शायद कोई 2 मशीन लगाना पड़े या 3 लगाए 6 लगाए, उस हिसाब से जगह लगती है, जैसे 12x12 के कमरे में 2 मशीनें लगती है, समझ लो आप, और ज्यादा मशीनें तो उससे साफ सी जगह चाहिए।
1: तो अभी आप 2 मशीनें लगाए?
0: हम 3 लगाए हुए।
1: अच्छा, और अगर कोई खुले माल में आपसे लेना चाहे, जैसे 1 तौलिया 2 या 3 4 5 ऐसे में आप बेचते हैं?
0: दे देते हैं।
1: अच्छा, कितने की 1 तौलिया जाती है?
0: जैसे तौलिया कपे के ऊपर है, 12 रुपए की भी, 15 की भी है, 35 की भी है, ये तो वेरायटी अलग अलग
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
0: नमस्कार।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आपने इस बातचीत को सुना और जो हीरा लाल जी बता रहे थे कि किस तरीके से हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं तौलिया का व्यवसाय करके, तो हमें भी इस व्यवसाय को अपनाना चाहिए और अपनी आय को बढ़ाना चाहिए।
1: हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तौलिये का ही व्यवसाय करना चाहिए। इससे मतलब ये होता है कि आप जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, आपको किसी भी काम को करने में अच्छी लगन हो, अच्छी पकड़ हो, आप सोचते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए और वो काम खुद का होना चाहिए, तो आप वो जरूर करें और हो सकता है कि उसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकें।
0: बिल्कुल, और मदद करने के लिए चूंकि आपको लगता है कि हमें परेशानी आ रही है ट्रेनिंग्स के लिए, तो बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी ऐसी संस्था है जो ट्रेनिंग्स इन सारे व्यवसायों के लिए कराती है, तो आप जुड़िएगा हमसे और बात करिएगा और इस व्यवसाय संबंधी बातचीत करने के लिए हम आपको फोन नंबर दे देते हैं। फोन नंबर है हमारा 94-25-14-17-26।
1: श्रोता साथियों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि रेडियो बुंदेलखंड बार बार आजीविका से जुड़ी हुई बातों पर क्यों जोर दे रहा है, तो आपको बता दें कि हम देख रहे हैं कि जब हम फील्ड पर जाते हैं नुक्कड़ नाटक या नेहरू कास्टिंग के माध्यम से, तो देख रहे हैं कि अपने गांव में जितनी जनसंख्या पहले थी अब वो नहीं है। हुआ क्या है कि वो लोग पलायन कर गए हैं, यानी कि अपना भरण पोषण करने के लिए दिल्ली चले गए हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा, आखिर हम लोग कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें बाहर जाने से कितनी समस्या होती है, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, और जब हमारे बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे तो उन्हें कितनी बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आज मजदूरी कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे बच्चे भी आगे चलकर मजदूरी ही करें, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तो हो सकता है वो कुछ अच्छी नौकरी करें या फिर अपना खुद का धंधा करें या रोजगार लगाएं कुछ भी। तो इसीलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि आप अपना खुद का व्यवसाय लगाइए और अपनी आजीविका को अच्छे से चलाइए।
0: बिल्कुल वर्षा जी, आप एक बात हम इसमें और जोड़ेंगे, क्योंकि हम आप देखते हैं कि जब हम दूसरों की मजदूरी करने के लिए यानी यहाँ से हम पलायन करते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो शिक्षा पर, उनकी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि बच्चों पर सबसे खासा असर पड़ता है। लोग सोचते हैं कि मजदूरी का बेटा मजदूरी करेगा, यानी मजदूर करने वाला व्यक्ति का बेटा मजदूरी करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मजदूर करने वाले का बेटा इंजीनियर

0: सकता है, मजदूर करने वाले का बेटा डॉक्टर बन सकता है, सारे जो रहते हैं मजदूर करने वाले लोग आगे चलकर बड़ा अपना अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और अपने पढ़ाई का स्तर जो रहता है, हम और आप देखते हैं कि पढ़ाई का स्तर जो अब हम बुंदेलखंड को देखें तो बच्चे जो मजदूर करने के लिए चले जाते हैं साथ में, तो उनका पढ़ाई का स्तर बहुत ही कम हो जाता है, तो अशिक्षित होने के कारण उनको बहुत सारी समस्या आती है।
1: जी हाँ साथियों, तो इसीलिए हमारी बात पर गौर फरमाइएगा कि हम जो आजीविका कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ये आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, इस पर हमें जरूर अपने सुझाव और फीडबैक दें।
0: बिल्कुल, और इसके लिए आप पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
1: साथियों, अब हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय होता है, लेकिन आप अपने सुझाव, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हो या फिर आपने भी इससे कुछ सीख ली हो, अपने जीवन में थोड़ा सा भी अगर बदलाव किया है इस कार्यक्रम को सुनने के बाद, तो हमें जरूर बताएं, हम आपके पास आएंगे और आपकी कहानी सबको सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल, तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और रेडियो साथी वर्षा को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।

0: मुझे हक है कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4। और हमारे साथ हैं हमारे रेडियो साथी
1: मनीष। और साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मुझे हक है, क्योंकि मुझे हक कार्यक्रम जैसा ही नाम है वैसा ही इसका काम है, क्योंकि मुझे हक है, मुझे
0: समझ
1: हक
0: रहे
1: है
0: हैं,
1: जानने का,
0: मुझे
1: मुझे हक
0: हक
1: है
0: है
1: पहचानने
0: पहचानने
1: का,
0: का,
1: और
0: और मुझे
1: मुझे
0: हक
1: हक
0: है
1: है
0: जो मेरे लिए योजनाएं चल रही हैं
1: जी
0: उनका लाभ लेने का।
1: बिल्कुल वर्षा और सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम मुझे हक में बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और श्रोता साथियों को फिर से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारे
0: जी
1: साथियों
0: जी
1: के
0: जी
1: साथ, क्योंकि काफी दिनों से मुझे हक कार्यक्रम में हम योजना पर बात नहीं कर रहे थे, और हम आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बेरोजगार युवा साथी, आप उनके मन में एक ही सवाल चलता है कि हमें साहब योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल। और देखिए होता क्या है, सरकार हम सबके लिए, हम बेरोजगार साथियों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती रहती है हमेशा समय समय पर, जिनका लाभ हमें मिल जाए और जिसकी वजह से हमें एक छोटा सा कुटीर उद्योग ही टाइप कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे हम अपना आय चला सकें।
1: बिल्कुल वर्षा, क्योंकि हम और आप ये देखते हैं कि जब आजीविका की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो ये सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लग जाता है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे रोजगार हम करेंगे, और साथ में ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है हमारे साथियों के मन में चलती है कि क्या काश हमारा ये रोजगार हम जो लगा रहे हैं, जो हम व्यवसाय डालने जा रहे हैं, वो व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन इसके लिए एक उपाय है, हमारे पास उपाय है, क्योंकि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए जा रहे हैं। यदि आपके पास रुचि है, यदि आपके पास हुनर है, आप ये देखते हैं कि हम किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं और अपनी हुनर बताते हैं कि साहब हमें ये काम बहुत अच्छा आता है, चाहे वो ऑटो पार्ट्स की दुकान हो, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान हो, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग रहते हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, उसके कारीगर आप स्वयं रहते हैं। लेकिन समस्या आती है कि हम अपना स्वयं का व्यवसाय नहीं डाल पाते, हम दूसरों के लिए काम करते हैं।
0: अरे अरे मनीष जी, अभी आप सारी बातें बता देंगे तो हमारे श्रोता साथियों को पता कैसे चलेगा कि आज इस मुझे हक है कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के लिए क्या लेकर आए हैं। तो पहले हम बता देना चाहते हैं कि आज श्रोताओं मुझे हक है कार्यक्रम में हमें जानने का हक है कि हम सुनेंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूरी जानकारी कि किस तरह से ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और कैसे हमारे बेरोजगार साथी जो हैं वो इस योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं।
1: लेकिन वर्षा, हमें लगता है कि एक गीत संगीत हो जाए।
0: अरे मनीष जी, आप बस सुनते ही नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है।
1: जी
0: हम वही बताने वाले हैं कि हम जानकारी लेंगे, साथ में कुछ गीतों के साथ मनोरंजन भी करेंगे, और कुछ हम और आप मिलके अपने श्रोताओं को कुछ और नई जानकारी भी देंगे ताकि हमारे साथी कहीं भटके ना और इस योजना तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जो बात आप कर रहे थे कि यहाँ पर एक गीत सुनना है, बिल्कुल चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक बढ़िया सा लोकगीत।
2: लड़का बारे बदा मांग रहे सुन सुन के।

रेडियो अपनी बातें। रेडियो बुंदेलखंड पर श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये मधुर सा गीत और जिसे गा रहे थे पन्ना लाल अहरवार और उनके साथी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम जो योजना के बारे में जानने वाले हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में, उस योजना के बारे में जानते हैं और आपको ले चलते हैं सीधा मनीष जी के पास।

0: इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं उद्योग विभाग के अधिकारी। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि उद्योग विभाग की ओर से कौन सी संचालित योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरीके से उसका लाभ लिया जाता है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिएगा।
1: जी, मेरा नाम हितेश ठाकड़ है और मैं उद्योग विभाग में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ टीकमगढ़ में।
0: तो सर उद्योग विभाग की तरफ से कौन सी योजना संचालित की जा रही है?
1: वर्तमान समय में शासन की 4 योजनाएं हैं जो उद्योग विभाग संचालित की जाती हैं।
0: जी,
1: चारों के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। पहली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना।
0: जी,
1: इसके अंतर्गत आपको 18 से 45 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए।
0: जी,
1: इसके अलावा आपको न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना चाहिए।
0: जी,
1: ठीक है। इसमें राशि की बात करें तो इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक की राशि आपको आपके व्यवसाय सेवा तथा उद्योग के पर्पज से आपको दी जाएगी। इसके अलावा हमारे आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः ऑनलाइन है। आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरना है तथा इसका प्रिंट आउट हमारे जिला कार्यालय टीकमगढ़ में आपको जमा करेंगे।
0: इसको ये मध्य प्रदेश में का मूल निवास।
1: जी, इसके लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना सबसे पहले बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपके पास 5वीं की मांग सूची होनी चाहिए।
0: जी,
1: निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
0: जी,
1: जाति प्रमाण पत्र, अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन आवेदन करते वक्त एक आवेदनकर्ता के पास अपने पास होने चाहिए।
0: अच्छा, उस फॉर्म में जब फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है कि कार्य योजना किस तरीके क्या आपको पूछा?
1: जी, इसमें क्या है, एक कार्य योजना का प्रारूप होता है, 2 पन्ने का ये प्रारूप है। वो आमतौर पर अपेक्षा की जाती है कि आवेदक द्वारा ये भरी जाए, लेकिन किंतु कई आवेदक इसे नहीं भर पाते, इसलिए ये कार्य योजना हम अपने विभाग में अपने ऑफिस में भरते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप कार्य योजना ना भर पाए तो आप हमारे विभाग में संपर्क करके पहले वो कार्य योजना बनवाएं, फिर ऑनलाइन

0: आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी बेसिक जानकारी पूछी जाएगी आवेदन में, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका नाम, आपकी उम्र, आपका पता, और आप किस बैंक के लिए आवेदन कर रहे हो उसको आपको आवेदन में ऑनलाइन भरना पड़ेगा, जिससे जब आप आवेदन करोगे और जमा करोगे तो हम अपने विभाग से उसी बैंक के लिए स्वीकृत करके आपका आवेदन प्रेषित करेंगे।
1: अच्छा, ये सर उद्योग विभाग जब स्वीकृत भेजता है अपना डेटा तो कौन कौन से बैंकों को जाता है कैसे?
0: जी, ये इसमें सभी प्रकार की राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है, वो भी शामिल हैं। लेकिन इसमें एक क्लॉज रहता है कि CGTMSE करके जो प्राइवेट बैंक इसमें कवर नहीं होती हैं, इसीलिए प्राइवेट बैंक आमतौर पर ये केस नहीं करती हैं। जबकि जो शासन की जो सभी समस्त बैंक है, ग्रामीण बैंक से लेके कैनरा बैंक, SBI बैंक, जो भी समस्त शासकीय बैंक है, वो सब इस योजना के अंतर्गत अपने अपने काम करती हैं।
1: अच्छा, तो ये चीज और बताइए, जैसे उसका आवेदन भर गया है, उसने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया है, तो कितने दिन बाद उनको ये राशि प्रदान हो जाएगी, क्या इसकी प्रक्रिया क्या रहती है?
0: जी, जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और जो भी योजना हमारे विभाग से चल रही है वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत कवर है। इसके अंतर्गत अधिकतम 30 दिवस के अंदर हमें उस पर एक्शन लेना होता है और बैंक को प्रेषित करना होता है। अतः आप जब जिस दिनांक से आवेदन जमा करते हो उसके अगले 30 दिवस के अंदर हम आपके आवेदन पर निर्णय लेते हैं, इसे स्वीकार किया जाए या आगे भेजा जाए, तथा इसकी सूचना आपको मोबाइल से भी दी जाती है। और इसमें लगभग 30 न्यूनतम 30 दिवस आप समझिए।
1: बहुत सारे सर हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग जब हम फील्ड पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सर हमने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया था, उद्योग विभाग में जमा भी कर दिया था, लेकिन अभी तक हमारी स्वीकृति नहीं आई है, तो क्या उसका कारण रहता है?
0: जी, कारण इसमें ऐसा हो सकता है कि कहीं मिसमैच हो गया हो आपका फॉर्म हार्ड कॉपी, जैसे आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसे आपको लगता है कि आपको बहुत दिन हो चुके हैं तो आप मोबाइल से या व्यक्तिगत संपर्क से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या जो भी उसका निवारण किया जाएगा।
1: जी, और इसके बाद जब बैंक के पास जाता है तो बैंक कितने दिन में उसको स्वीकृत कर देगी?
0: देखिए, बैंक के लिए एक डेडलाइन तो फिक्स नहीं है जी, लेकिन आमतौर पर बैंक अपनी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के पश्चात ये कर देता है। अब कितना वो टाइम लेते हैं वो हर बैंक का अलग अलग रहता है, इसलिए इसकी जानकारी बैंक वाले ही बता पाएंगे।
1: अच्छा, इसमें ये रहता होगा कि आवेदक जो है यदि बैंक से वो कर्ज लिए हो तो क्या उसकी स्वीकृति हो जाएगी?
0: जी जी, बिल्कुल नहीं, आवेदक को बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, उसी बैंक का नहीं, किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपको लोन दिया जाएगा उससे पहले आपका एक नोटिस लगेगा कि आप डिफॉल्टर तो नहीं हो, तो आवेदक अगर डिफॉल्टर है तो उसको लोन नहीं दिया जाएगा, वो अपात्र हो जाता है।
1: और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होकर बैंक भी स्वीकृत कर देता है तो क्या डायरेक्टली उसके पैसा एक खाते में जाता है कि जो वो सामान खरीदना चाहता है उसके?
0: जी, इसके बारे में भी हमारे विभाग ने प्रावधान किया है, कुछ अनियमितताओं को लेकर इसका एक समाधान ढूंढा गया है कि जब आप कोटेशन लगाओगे, जैसे मान के चलिए आप जनरल स्टोर खोल रहे हो, उसके लिए आपने सामान लाओगे कहीं ना कहीं से, तो वहां का आप कोटेशन लगाओगे, बिल लगाओगे, तो जब बैंक में वो बिल जमा करोगे आप, तब आपका ऋण स्वीकृत हो जाएगा। जब वितरण की बारी आएगी तो जो वितरण की राशि होगी वो सामने वाले के खाते में जाएगी जहां आपने कोटेशन लगाया है। आपको एक सेल लेटर मिलेगा जिससे आप उस सेल लेटर को वहां लेके जाइए और वो आपको सामान दे देंगे उतने मूल्य का।
1: अच्छा,
0: तो ये इसकी प्रक्रिया रहती है, आपको नगद राशि उतने सामान की नहीं मिलेगी। अच्छा, आपको जो अन्य खर्चे हैं जैसे काउंटर फर्नीचर या जो आपका CC लिमिट चलता है बैंक में, उसके लिए आपको नगद राशि मिलेगी, लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा सामने वाले के अकाउंट में जाएगा।
1: अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे किसी ने उद्योग विभाग से अपना लोन पास करवाया है और बैंक ने भी लोन पास कर दिया है, तो क्या उसको पूरी राशि जमा करनी पड़ेगी कि कुछ उद्योग विभाग उसमें छूट देगा?
0: जी जी, इसके लिए देखो, शासन ने जो हमारे जो बेरोजगार युवा भाई हैं उनको प्रोत्साहन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें हर योजना में अलग अलग चार स्कीमें, मैं उसका अलग अलग बताऊंगा। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात करें तो इसमें जो सामान्य पुरुष है उसको 15%, इसके अलावा वो किसी भी कैटेगरी में आ रहा है, मान के लिए SC है, ST है, OBC है, विकलांग है, अल्पसंख्यक है और महिला है, इन सभी को 30% परियोजना लागत का 30% शासन की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी दी जाती है। आपको जो राशि आपकी है उसमें से 30% घटा के आपको बाकी रुपए बैंक को जमा करना है, जो 30% वो आपको प्रोत्साहन रूप आपके कार्य के लिए दी जाती है।
1: अच्छा अच्छा, और सर ये कितने दिन में उसको जमा करना पड़ता
0: है? देखिए, ये तो ये बैंक का मैटर है, लेकिन इसमें फिर भी मैं बता देता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसमें अधिकतम 7 वर्ष रहता है और मिनिमम 6 माह रहता है। इस बीच की अवधि में बैंक आपकी किस्त बनाएगी आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको पूछ के, तो अधिकतम 7 वर्ष रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता, 7 वर्ष के अंदर आपको चुकाना है।
1: और यदि बैंक से वो लोन लेकर वो फेल हो जाता है अपने उद्योग लगाने पर?

0: के बाद तो क्या उसकी क्या हो रहा है?
1: देखिए, फेल होने पर पहली बात तो जो आप जिसके लिए उद्योग लगा रहे हो पर या जिसके लिए आप मुझे ऋण ले रहे हो वही उसकी गारंटी होता है पहली बात तो। अगर आप फेल होते हो तो वही जब्त होगा सबसे पहले। आपने दुकान लगाई तो उसका सामान, कोई भी चीज आप लगाई तो उसका सामान, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जब आप फेल होते हो या डिफॉल्टर होते हो, इसके लिए भारत शासन की एक स्कीम है जिसे CGTMSE करके बोलते हैं। उसमें क्या है, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें रजिस्टर होती हैं। मान के चलो अनफॉर्चुनेटली कोई उद्यमी डिफॉल्टर हो जाता है तो बैंक अपना जो डिफॉल्ट किया हुआ पैसा है वो वहां से कवर करती है। ये ऐसा प्रावधान किया गया है।
0: अच्छा अच्छा जी। और यदि किस्त उसकी चूक जाती है तो क्या रहता है?
1: किस्त चूकने पर पेनल्टी लगती है उनका कुछ परसेंटेज रहता है बैंक का, 0.2 या 0.5 जो परसेंट रहता है इस हिसाब से पेनल्टी लगती है।
0: अच्छा अच्छा। और इसमें उद्योग विभाग का कोई रोल नहीं रहता?
1: जी नहीं, उद्योग विभाग का रोल यहाँ तक सीमित है कि वो आप जब आवेदन करोगे आपके आवेदन को स्वीकृत करेगा, बैंक प्रेषित करेगा। अगर बैंक आपका लोन वितरित कर देता है तो आपकी जो एलिजिबल मार्जिन मनी है जो सब्सिडी जैसे बोलते हैं वो हम रिलीज कर देंगे।
0: अच्छा जी। इसमें कोई गारंटर रहता है?
1: जी गारंटर, देखो बेसिकली शासन की जो गाइडलाइन है उसमें गारंटर का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ बैंकों के हमारे संज्ञान में आया है कि उनके कुछ इंटरनल सर्कुलर हैं जिसके तहत उन्हें गारंटर की आवश्यकता होती है। तो ये हर बैंक का अलग अलग रहता है, तो ये वही अच्छे से बता पाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आपने जो जानकारी सुनी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जानकारी आप सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है?
1: बिल्कुल वर्षा, क्योंकि ये जानकारी उन युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी है जो रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं। आप घर पे ही अपना स्वरोजगार लगा सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं और बहुत ही कम पूंजी में, बहुत ही कम लागत में ऐसे ऐसे टिकाऊ रोजगार हैं, ऐसे ऐसे सस्ते रोजगार हैं जिसको हम घर बैठे कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सवाल आता है कि अब पैसे कहाँ से, तो ढाकड़ जी ने हमारे बता भी दिया है कि जो पैसे वो उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाती है, वो उद्योग विभाग स्वीकृत कर देता है आपके आपके परियोजना को और वो परियोजना बैंक में जाकर स्वीकृत हो जाती है और आपको एक आसान तरीके से ऋण उपलब्ध हो जाता है और आप अपने स्वयं का जो आपने सोच रखा है उस व्यवसाय को करने में आपको मदद मिलती है।
0: मनीष जी, यहाँ पर हमारे जो श्रोता साथी हैं थोड़ा सा नर्वस तब हो जाते हैं जब वो कहीं प्रयास करते हैं और वो प्रयास सफल नहीं होता है। तो अभी जैसा कि धाकड़ जी ने बताया है कि कई बार क्या होता है कि फाइल यहाँ वहाँ हो जाती है और हम फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो जिस चीज को कहते हैं कि बार बार उस चीज के बारे में हम पूछते रहें। मान लीजिए अगर किसी को हमने पैसा दिया है या कोई चीज हमने दी है, तो हम उससे बार बार पूछते रहते ना कि भैया वो चीज ऐसी थी, वो कहाँ गई, या फिर हमने आपको वो पैसा दिया था वो अब कब लौट आ रहे हैं, क्या कैसा। तो उस चीज की स्थिति जानने के लिए हम उससे बार बार कांटेक्ट करते हैं, उसको फोन करते हैं या जाते हैं उसके पास। तो ऐसे ही जब हम किसी योजना का लाभ लेते हैं तो हमें उसका फॉलो अप जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप गए, आपने इस योजना की जानकारी ली, इसका फॉर्म डाला और बैंक में या उद्योग विभाग में जाके आपने सबमिट किया और उसके बाद आके आप फ्री होके घर पे बैठ गए। अब आप सोचेंगे कि उद्योग विभाग वाले खुद आएंगे और वो हमसे पूछेंगे कि भैया आपने किसके लिए अप्लाई किया था। तो ऐसा नहीं है, आप भी एक दो बार वहां पे जाइए और पूछिए उनसे कि साहब हमने जो फाइल दी थी उसका क्या हुआ, कब तक आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके एक तो क्या होगा कि उद्योग विभाग के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे क्योंकि जान पहचान बढ़ेगी और जान पहचान बढ़ने से आसानी से लोग आपको पहचानने लगेंगे। तो आपको कहीं से भी कैसे भी करके किसी न किसी योजना से जोड़ दिया जाता है तो आपका काम आसान हो जाएगा।
1: एक हम अपने श्रोता साथियों को सलाह और देना चाहते हैं, जहां तक कि मेरा अनुभव कहता है कि हमारे श्रोता साथी अपने मन में जो आपकी इच्छा है कि हमें इस व्यवसाय को करना है, उसके लिए आप जो सरकार द्वारा, जैसे हमने स्वरोजगार योजना के बारे में बताया है, उसकी सबसे पहले वहां जाकर संबंधित अधिकारी के पास पहले जो गाइडलाइन रहती है उसको पढ़ लेना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि बहुत सारे साथी सोचते हैं कि सभी को लोन उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। उसके लिए भी कुछ कैटेगरी बनाई जाती है, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कितना पैसा, कितना छूट, ये सारी परियोजना में लिखा रहता है और उस

0: हिसाब से आपको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को ऋण उपलब्ध हो जाए, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमें पढ़ लिख कर पूर्ण रूप से तैयार होकर तब हमें एक डिमांड करनी चाहिए, तब हमें मांग करनी चाहिए, तब हमें आसान तरीके से वो ऋण आपको उपलब्ध हो जाएगा और आसान तरीके से आप अपने व्यवसाय लगाने में आप सफल होंगे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा है। इस बात पे हम भी थोड़ा सा और कहना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है जब हम बैंकों में जाते हैं तो बिना पढ़े ही हम किसी भी कागज पे दस्तखत कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम पढ़ने में समय व्यस्त करेंगे तो वो हमारा समय बेकार जाएगा या हम कहीं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब भी हम ऐसी किसी योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ते हैं, तो उस योजना के बारे में आपको एक-एक जानकारी लेना आपके लिए जरूरी है। आप उस योजना को अच्छी तरीके से पढ़िए कि आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अगर नहीं आते हैं तो फिर आपका समय वहां पे बेकार जाने वाला है। तो इसलिए पहले से ही आप उसकी जानकारी ले लें ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो। और जहां तक बात होती है पैसे की, तो मनीष जी देखिए, जब हम एक बार ठान लेते हैं कि हमें ये व्यवसाय या कुटीर उद्योग कुछ भी खोलना है, अपना स्वयं का व्यवसाय करना है, पैसा सिर्फ एक माध्यम होता है, ना कि रुकावट बनता है। तो आप सारी जो तालमेल होती है, जो भी और व्यवस्थाएं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, उनको एक साथ रखिए। पहले पैसा एक बाद की चीज होता है, पैसा आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, किसी ना किसी योजना से आपको जोड़ ही दिया जाएगा, अगर आपके पास लगन अच्छी है, मेहनत अच्छी है, आप वाकई में चाहते हैं कि आप कोई उद्योग खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है जो चीज, वो होती है प्लानिंग, मार्केटिंग और आपका लगन। आप कितनी लगन से उस काम को करने में लग रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और इसी के साथ, क्योंकि अब हमारे घड़ी और हमारा कार्यक्रम अब हमें इजाजत नहीं देता है कि आगे भी आप बने रहें, क्योंकि बहुत सारी बातचीत भी हो गई है और योजना के बारे में श्रोता साथियों को पता भी चल गया है। तो हमें आशा है कि अगले कार्यक्रम में जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमें कॉल लगाकर पूछेंगे, जानकारी लेंगे या फिर अपने सुझाव जरूर देंगे कि हमने इस योजना के लिए संबंधित अधिकारी के पास जाकर हमने फॉलोअप किया, हमने बातचीत की। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम सुनकर हमारे श्रोता साथी जरूर इस बात पर बिल्कुल अमल रहेंगे कि हमें इस योजना का लाभ लेना है।
1: बिल्कुल मनीष जी, और क्योंकि देखिए घड़ी की सुइयां भी अब हमसे कह रही हैं कि चलिए आपका समय हो गया है, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी हमारा आने ही वाला है। तो श्रोताओं, हम चलते हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन जाने से पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनमें अगर आपको लगता है कि और बेहतरीन तरीके से कैसे इन्हें डिजाइन कर सकते हैं, कैसे इन्हें आप सबके लिए ला सकते हैं, आप सबके लिए कैसे ये एक लाभदायक कार्यक्रम बना सकते हैं हम, उसके लिए आप हमें सुझाव जरूर दें। और सुझाव देने के लिए हमारा नंबर वही है।
0: 92 19 20 77 49।
1: तो अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार। इस कार्यक्रम को साथियों हम बहुत दिन से चलाओ चले आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे श्रोता साथी सबसे पहले जब ग्राम विकास की बात आतेगी तो ग्राम विकास में सबसे ज्यादा सरपंचन को अहम भूमिका रहेगी, आपको भी पता है और सब साथियों को हमारे पतो भी है। और तो और साथियों अभी से अपन को ग्राम पंचायत जब से गठित हो गई हैगी, अपन को का करने हैंगे सरपंचन के संगे मिलके अपने ग्राम विकास को खा

का तैयार करने हैं को संगे संगे जो नियमावली हैगी वह नियमावली के अनुसार अपन को काम करने हैं। सबसे पहले एजेंडा तैयार करने कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन कौन से ऐसे काम रह गए हैंगे जो पंचायत करात हैंगे और जिनकी मूलभूत आवश्यकता हैगी। तो सबसे पहले अपन हो जैसे बरसात को मौसम चल रहा है गो बरसात के मौसम में सबसे पहले जब बैठक हुई हैगी तो बैठक में अहम चर्चा अपन हो का करने हैं गो के सबसे पहले अपन हो एजेंडा तैयार करने खेती किसानी को कि खेती किसानी में हमारे किसान साथी कैसे काम कर सकते हैं पानी को कैसे संरक्षित कर सकते हैंगे बरसात के पानी को कैसे रोक सकते हैंगे मेल बंधन कौन तरीके से करा सकते हैंगे तालाब गहरीकरण कौन तरीके से हो सकते है गो संगे संगे अपने पेयजल की का व्यवस्था है सड़क की का व्यवस्था हैगी शिक्षा की का व्यवस्था हैगी रोजगार में जब अपन रोजगार की बात करते हैंगे तो ग्राम पंचायत में मनरेगा में बहुत सारा काम आते है गो तो बाकी का व्यवस्था है। तो ये सारे चीजें अपन हो लिख के वैसे तैयार करके रखने आगामी ग्राम सभा जब भी हुई है तभी अपन हो ये एजेंडा जो आपने तैयार करो ये रूपरेखा आपने जो तैयार करी ग्राम पंचायत में लेके जाने हैंगे और सरपंच जन के संगे जो बैठक होते हैगी ग्राम सभा की बैठकें होते हैंगी उनको जाके अपन को बताना है कि जे जे मूलभूत आवश्यकता है आप अपन को ग्राम विकास पे अपन को काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हैगी। तो ये मूलभूत चीजें हैं जो अपन को सोचने हैं समझने हैगी। दूसरी बात आते हैगी कि स्वयं सहायता समूह हर ग्राम पंचायत में बन रहेंगे तो ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह की काब भूमिका रत है ग्राम पंचायतों में बा विषय पर आज अपन बतकाव कर बे बारे हैंगे। छोटी छोटी बातें अपन ध्यान में रखे हैं कि कैसे बहुत ज्यादा आवश्यकता रत है खास तौर पर स्वयं सहायता समूह जो काम करत हैंगे मिलके जब काम करत हैंगे तो बहुत अच्छा लगत है आनंदित होते हैं बहुत सारी चीजें निकल के आते हैं तो वो विषय पर अपन बतकाव कर भी जा रहे हैं लेकिन अपनी बातचीत काफी हो चुकी है तो अपन का ना अपन इतने 900 लोग गीत को सुन लेते हैं और गीत के बाद अपन आज हम जाने कि ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह की भूमिका खासतौर पर ग्राम पंचायतों में भूमिका स्वयं सहायता समूह की स्वयं सहायता समूह की का भूमिका रत हैगी जहाँ पे भी एक प्रकाश डाले हैंगे का पात्रता ग्रामीण युवक और जो गरीब हैंगे उनको का सहयोग मिलना चाहिए विशेष समूह जो बनाते हैं कैसे बनाते हैंगे घटक कार मापदंड का रथ है उन विषय पर अपन चर्चा करेंगे लेकिन जैसे पहले अपन सुनते हैं जो 900 गीत को बने रहो आपके आरजे मनीष के साथ सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बात है।

अपना रेडियो अपनी बातें। अभी आप सुन रहे थे उत्तम सिंह यादव और उनके साथियों के आवाज में एक प्यारे से गीत को। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ात भाई अपन जानत हैं कि ग्राम पंचायत में खास तौर पर स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका रहता है, बाबे साहब पर अपन बातचीत कर रहे हैं। आपको पता होनी चाहिए कि आजीविका कौशल के सफल क्रियान्वयन में विशेष कर अपने अधिकार के क्षेत्र में अत्यंत निर्धन परिवार को लाभ पहुंचाने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका रहेगी। क्योंकि आजीविका कौशल में कौशल विकास के लाने ग्रामीण सैचुरेशन अप्रोच अपनाई गई, जाकि लाने कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने, जानकारी प्रदान करने के

प्रयासों में मदद करने, कौशल विकास की मांग और नियोजन के लिए डाटाबेस तैयार करने, जॉब मेला के आयोजन में मदद करने तथा क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर पीआरए की सहायता करने में ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाते हैं। ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि महिलाएं अधिक अत्यंत कमजोर वर्ग कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शामिल हैं, उन्हें संभावित उम्मीदवारों और संभावित उम्मीदवारों के अभिभावकों के साथ एक विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित करना होगा और कार्यक्रम की संभावनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी। जब पीआईए कौशल विकास का प्रशिक्षण देती है तब ग्राम पंचायतें विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट प्राप्त करके तथा प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवार के साथ सीधी बातचीत करके क्रियान्वयन पर नजर रख सकती है। ग्राम पंचायतों का क्रियान्वयन संबंधित मुद्दे जिला और राज्य मिशन के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ग्राम पंचायतें प्रशिक्षण के पश्चात उम्मीदवारों के लिए को दिए गए काम पर नजर रख सकती है। काम के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करने के लिए उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों के साथ बातचीत कर सकती है। शिकायत निवारण के हिस्से के रूप में कार्य कर सकती है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका जो रहती है वो आजीविका कौशल में कौशल विकास के माध्यम से निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है इसमें, और निर्धनों की संस्थाओं की क्षमताओं का इस्तेमाल करके नियोजन का लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। निर्धनों की संस्था HSG यानी स्वयं सहायता समूह, उनके संघ और तथा आजीविका क्रियाकलाप निर्धनों को स्वयं सहायता पर आधारित सामूहिक क्रियाकलापों तथा पारस्परिक सहयोग के लिए मंच मुहैया कराती है। लक्ष्य में रखे हुए लाभार्थियों को एकजुट करने, कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने, लाभार्थियों को निर्धारण में सहायता करने का निर्धारित युवकों के अभिभावकों हेतु काउंसलिंग सत्रों का आयोजन में मदद करने, पीआईए द्वारा क्रियान्वयन की निगरानी करने आदि सहित विभिन्न क्रियाकलापों में इन संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार पीआईए को अपनी परियोजना का क्रियान्वयन की कार्य नीति तैयार करने में एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह की भूमिका को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यानी जरूरत है। अब बात आती है पात्रता। ग्रामीण युवक जो गरीब हैं, 18 से 35 वर्ष की आयु के निर्धन ग्रामीण युवक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह हैं। विकलांग व्यक्तियों तथा विशेषकर अपेक्षित जनजाति समूह यानी PTG के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष इसमें रखी गई है। विशेष समूह जिनमें विकलांग व्यक्ति, अवैध व्यापार में पीड़ित व्यक्ति, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति, किन्नर, पुनर्वास किए गए बंधुआ जो मजदूर है को 16 वर्ष से अधिक की आयु में भी नामांकन की अनुमति दी जा सकती है, वसरते कि वे जॉब संबंधित प्रशिक्षण सहित अन्य प्रशिक्षण का कार्य पूरा होने तक 18 वर्ष के हो जाएं। निर्धनों का भागीदारी पूर्ण निर्धारण नामक प्रक्रिया के जरिए निर्धनों का निर्धारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया NRLM कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा PIP के लिए अधिसूचित किए गए प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा। इस संभावना व्यक्त की जाएगी कि PIP से लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्ष्यबद्ध करने में मदद इसमें मिलेगी। जब तक PIP के उपयोग से निर्धनों का निर्धारण किया जाता है तब तक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह के निर्धारण में BPL परिवारों की मौजूदा सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। उपयुक्त के अलावा ऐसे युवक जो विगत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मनरेगा कार्यस्थलों पर काम से कम 35 दिनों तक श्रमिक के रूप में कार्य

कर चुके हैं बीपीएल सूची में न होने के बावजूद इसके लिए पात्र होंगे। ऐसी आशा जताई जाती है आशा जताई गई है कि पीआईपी के दौरान उनका निर्धारण कर लिया जाएगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर विशेष बल राष्ट्रीय स्तर पर 50% निधि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की जाएगी।

समूह में से हो। कवर किए गए व्यक्तियों में से एक तिहाई लाभार्थी महिला होनी चाहिए, यह निर्धारण केवल न्यूनतम है। यद्यपि यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों में से किसी भी श्रेणी में कोई पात्र लाभार्थी नहीं है और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इसे प्रमाणित कर देती है, तब उनके लक्ष्यों को अन्य श्रेणी के लक्ष्यों में बदला जा सकता है। विकलांगों व्यक्तियों के मामले में अलग से परियोजना प्रस्तुत की जाएगी, इस परियोजना के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र होंगे। इनकी इकाई लागत इन दिशा निर्देशों में उल्लेखनीय इकाई लागतों में से अलग होगी। विशेष समूह जो होते हैं उसकी भी एक गाइडलाइन तैयार है। यदि भी विकलांग व्यक्तियों की अवैध व्यापार से पीड़ित व्यक्तियों सर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों किन्नरों पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों जैसे विशेष समूह तथा अन्य कमजोर समूहों के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी राज्यों को ऐसे विशेष समूह जो अक्सर छूट जाते हैं तो ऐसे को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष कार्यनीति बनानी पड़ती है। इन समूहों की चुनौतियों से निपटने तथा भागीदारी में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य के स्वरूप को राज्यों द्वारा प्रस्तावित कौशल कार्य योजना में समाविष्ट किए जाने की जरूरत है। मूक बधिर चलने में अक्षम दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में संभावित नियोजकताओं को संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें काम पर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके। विकलांग व्यक्तियों की नियोजन पर जुड़े प्रशिक्षण संबंधित नोट आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर वेबसाइट है वहाँ पर उपलब्ध है नोट पूरे http://nrlmskill.in पर उपलब्ध है, यहाँ पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर घटक और मापदंड की बात करें तो आजीविका कौशल क्रियाकलापों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप और दूसरा है PIA द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप। अब आता है SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उनके लागत मापदंड। इस खंड में SRLM द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची उनके लिए लागत मापदंड के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह राज्य नोडल एजेंसी पर भी लागू होगा जिन्हें राज्य आजीविका कौशल क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है। कौशल में कमी का आकलन SHGA का उद्देश्य कौशल और नियोजन के लिए ग्राम पंचायत बार मांग का पता लगाना, नियोजन हेतु विभिन्न कौशल श्रेणी में प्रतिभावना उम्मीदवार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। हालांकि 10 वर्षों में किए जाने वाली जनगणना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कराई गए अध्ययनों से प्राप्त आंकड़े प्रारंभिक बिंदुओं हो सकते हैं, फिर भी SRLM को खुद या पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से ग्राम पंचायत वार विस्तार आंकलन कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप इससे जुड़िएगा और आपको लगता है कि SRLM या NRLM जो मध्य प्रदेश में चलता है उनसे जुड़कर विशेष तौर पर ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। साथियों हमें आशा है कि इसका दूसरा भाग हम अगले कार्यक्रम में जरूर आपके पास लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे चुनाव अभी संपन्न हुए हैं तो ऐसे में कुछ समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। किस तरीके से आपका नया सरपंच किस तरीके से काम करने में सक्षम है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसे इस पर गौर फरमाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथियों अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, क्योंकि अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है उस पर भी हम ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी हमारे जो उजान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती डूबी हुई है, तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी, क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को। लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में साथियों हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपने खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब ज़रूरत से दोगुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70-80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं, तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला दिखे और जैसे हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
0: जी जी जी, और रोपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रोपाई, चूंकि एक विधि रहती है रोपाई की, तो कौन सी ऐसी विधि है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
1: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हैं हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है, वो एक लाइन मेथड में हम करें, क्योंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60x60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60x45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60x60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना चाहिए?
1: जी सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा रखती है, और चूंकि हमारे जो किसान भाई हैं ना उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए अभी। यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उनकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूम में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूम में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
1: जी सर बिल्कुल, अभी क्या होगा जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर मिर्ची भट्टे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है, तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
0: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूँकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियाँ, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जी।

0: या तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों
1: बिल्कुल
0: को?
1: सर, अभी क्या है, जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही, जिसको हम पीथियम एपेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू, ये फैलता है। तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पे कार्बन डाई ऑक्सीक्लोराइड COC जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन और साथ में ही हम मैनको जैप या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
0: बहुत बढ़िया जानकारी, और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें, और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी, और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
0: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाए भी है, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
1: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भी भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो
0: जी
1: उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको बायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम बात करें अरका नाम का वैरायटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वैरायटी की, या काशी लालमा वैरायटी, ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी हैं, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं, और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
0: जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
1: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका। तो
0: अच्छा।
1: चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी, और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम को जैसो नाम तैसो काम भी है। साथियों ये कार्यक्रम में अपन सुनते हैं एक विधाकों और विधाको आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आज ही कार्यक्रम में अपन एक बढ़िया सी विधाकों सुने और विधाको आनंद लें। बा विधा है विधा कहरवा। जब कहरवा लहरियां लेत है तो देखो कितना सुहाना लगत, आहा जा लगत के झूमन लगे। बिल्कुल दोस्तों, तो आ दोस्तों यही क्रम में हम आपको एक बढ़िया सा कहरवा सुनाऊं थे और कहरवा को आनंद आप सब जने लो और हम भी ले। तो आ दोस्तों सुनते हैं कहरवा को।

बिल्कुल दोस्तों, ईश्वर से प्रीत ना लगाई उम्र तूने बिरथा गमाई। देखो दोस्तों, कितनों प्यारो जो कहरवा अपन सब जन ने सुनो है और ई कहरवा को आनंद लो है। और दोस्तों ई कहरवा को गा रहे थे भैया चंदन सिंह आरवान जी। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो आ दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ तो भाई सुनते हैं एक और बढ़िया से कहरवा को।

उमरिया है बारी, कैसे कटे हमारी। देखो दोस्तों, जो कितना प्यारो कहरवा अपन सब जन ने सुनो, ये कहरवा को आनंद लव है। और दोस्तों ये कहरवा को गा रहे थे भैया गजराज सिंह जी। अब दोस्तों गजराज सिंह जी के कहरवा के बाद फिर से अपन कार्यक्रम में सुनते हैं अगले साथियों के गायब है कहरवा को और उनके कहरवा को आनंद लेते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे सुनते रहो जो कार्यक्रम अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।